हम बोल रहे हैं आकाशवाणी की हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, सक संवत 1948 की आषाढ़ माह की तिथि 24, तदनुसार दिनांक 15 जुलाई सन 2026। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथेसिय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के

0: श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ही हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
2: एक प्रतिष्ठित कार्यालय की प्रोन्नति समिति के सदस्य अपनी कई बैठकों के बाद भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। विषय उसी कार्यालय के 4 योग्य कर्मठ कुशल प्रशासकों में से किसी एक को ही प्रोन्नति देने का था। अंत में उस समिति के सदस्यों ने इस विषय को कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी के पास इस निर्णय के साथ भेज दिया। हम लोगों के विचार से किसी एक को ही प्रोन्नत करना शेष तीनों के साथ अन्याय होगा, इसलिए हम लोग सर्वसम्मति से ये निर्णय करते हैं कि इनमें से किसी एक व्यक्ति की प्रोन्नति का फैसला आप ही करें। इसके बाद उन अधिकारियों के मासिक वेतन के भुगतान के पूर्व सर्वोच्च अधिकारी ने वेतन भुगतान कर्मचारी को बुलाकर कुछ अत्यंत गोपनीय आदेश दिए। यथासमय चारों अधिकारियों का वेतन भुगतान कर दिया गया। वेतन भुगतान के बाद ठीक दूसरे दिन उन चारों में से एक अधिकारी आकर वेतन भुगतान करने वाले कर्मचारी को ये कहकर कुछ रुपये लौटा गया कि मेरे वेतन लिफाफे में गलती से ये रुपये वेतन के रूप में अधिक थे, कृपया इसे वापस ले लें। इसके कुछ दिनों के बाद इन चारों में से एक व्यक्ति की प्रोन्नति की सूचना कार्यालय में प्रचारित कर दी गई। शेष तीनों सर्वोच्च अधिकारी के पास पहुंच गए कि उनकी प्रोन्नति क्यों नहीं की गई। प्रोन्नति देने का कारण स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च अधिकारी ने कहा, आप तीनों भी योग्य हैं किंतु ईमानदार नहीं है। ईमानदारी के अभाव में आपके सारे गुण अधूरे हैं। आपके वेतन के लिफाफे में वेतन के रुपये से अधिक रुपये थे, किंतु आपने इसकी चर्चा तक नहीं की। आप में से जो ईमानदार है उसी की प्रोन्नति हुई है। तीनों लज्जित होकर लौट आए। ये घटना कहने सुनने में छोटी लग सकती है, किंतु इसमें ईमानदारी का सामर्थ्य स्पष्ट हो जाता है। हम में अनेक कमजोरियां हैं, किंतु यदि हम में ईमानदारी है तो उसकी चमक में ये सारी कमजोरियां और त्रुटियां छिप जाती हैं। लोग प्रायः कह देते हैं कि दुनिया का व्यवहार ईमानदार बने रहने से नहीं चल सकता। व्यवहार में तो ईमानदारी घाटे का सौदा है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि व्यापार में साख उसी व्यापारी की बनी रहती है जो ईमानदार होता है। ऐसा व्यापारी अपनी चीजों के क्रय मूल्य का चिट्ठा अपने उपभोक्ताओं को निसंकोच दिखाकर उसमें ईमानदारी से अपना उचित मुनाफा जोड़कर उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है और तब उसकी दुकान से वस्तु को खरीदने में किसी उपभोक्ता को कोई आपत्ति नहीं होती। बेईमान व्यापारी कुछ दिनों तक ही अपने खरीदारों को ठग सकता है, पर उसकी पोल खुलती ही है और तब 4 दिनों की चांदनी अंतहीन अंधेरी रात बनकर सामने आती है। अपने अपने पेशों के प्रति ईमानदारी बनी रहे, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्या वो डॉक्टर ईमानदार है जो अपने रोगी को उसके रोग की सही जानकारी नहीं देकर केवल उसे अपनी आमदनी का अच्छा जरिया समझता है? क्या आप उस योग्य शिक्षक को ईमानदार मानेंगे जो कक्षा में अपना विषय केवल इसलिए अच्छी तरह नहीं समझाता कि इसके कारण विद्यार्थी अलग से उससे ट्यूशन नहीं पढ़ सकेंगे? उस कुशल प्रशासक में भी ईमानदारी का अभाव है जो बड़ी चालाकी से जांच के फंदे से अपने को बचाते हुए काम उन्हीं का मुश्तैदी से पूरा करता है जिनसे उसे बड़ी रकम हाथ लगती है। कार्यालय में काम करने वाले वे सभी व्यक्ति ईमानदारी से हट जाते हैं जो झूठे बहाने बनाकर अपने नियत स्थान से हट हट कर इधर उधर घूमने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं, और उस नेता में भी ईमानदारी के दर्शन नहीं होते जो लोक लुभावने वायदे तो करता है पर उसे पूरा करने की सोचता तक नहीं। यदि कोई हमें बेईमान कह देता है तो इसे हम सहज ही नहीं झेल पाते, सुनकर तिलमिला जाते हैं, इसे सबसे बड़ी गाली मानते हैं, और है भी ये सबसे बड़ी गाली। पर ये गाली नहीं सुननी पड़े या ये गाली किसी प्रकार हम पर सही ना उतरे, इसके लिए हमें ईमानदारी को अपने चरित्र का स्वाभाविक गुण बनाना ही होगा। ईमानदार व्यक्ति का लोहा उसके दुश्मन भी मानने को बाध्य हो जाया करते हैं। अंग्रेजों की अनेक कूटनीतिक चालें राष्ट्रपिता गांधी की ईमानदारी का सामना करते ही प्रभावहीन हो जाया करती थी। गांधी जी के सत्य अहिंसा को उनकी ईमानदारी ही अमोघ अस्त्र बना देती थी। अपनी ईमानदारी की रक्षा के लिए हमें अपने क्षुद्र स्वार्थों, तात्कालिक लाभों और बड़े से बड़े प्रलोभनों को सहर्ष छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी नष्ट हो जाने पर सभी प्रकार के लाभ कौड़ी के 3 हो जाते हैं। ईमानदारी वो जल भरी नदी है जिसमें हमारे गुणों की नाव सहज भाव से चल सकती है, ये ना रहे तो हमारे गुणों का जीवन में अग्रसर होना कठिन हो जाता है।
1: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

शेरों वाली मां, सिंह पे सवार अष्टभुजी माता वैष्णो देवी के संसार में अपार भक्त हैं। परंतु भक्त शिरोमणि श्रीधर का नाम सबसे ऊपर है। इस अनोखे भक्त ने अपनी सांसों की माला के हर मोती में अंबा भवानी माता वैष्णो देवी की पावन मूरत मन में बसा ली थी। श्रद्धा और आस्था के अमृत में रची भक्त श्रीधर की कथा जन जन के कल्याण के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है श्री रामचरितमानस की आज की कड़ी।
1: एपिसोड 31, 3-1।

दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए, कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी हम दे दें आपको। सुबह 7 बजे सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग विज्ञान वार्ता। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे इंटरनेट के लाभ एवं हानि। सुबह 7:20 पर 7:30 पर होगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। सुबह 8 बजे सुनते हैं समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी, इसे आप सुनते हैं सुबह 8:45 पर और 9 बजे से होगा विविध भारती के कार्यक्रम। हेलो हजारीबाग, हमारा दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे, पुनः 11 बजे से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 4:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5:02 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी और 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युवानी होगा शाम 6:02 पर और 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 7 बजे सुनते हैं प्रादेशिक समाचार एवं 7:10 पर जिले में आजकल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम छनकार आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। 7:30 पर होगा ऑल टाइम हिट्स कानूनी सलाह, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। और श्रोता अपनी फरमाइशी गीत सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी चाहत में रात्रि 8 बजे। 8:45 पर आप सुनते हैं समाचार संध्या और 9 बजे होगा न्यूज एट 9। पुनः 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

रात्रि 10 बजे सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा और 10:30 पर कार्यक्रम एक फिल्म से। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। हमेशा की तरह हमारी सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर। तो आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: राज्यस्य षट्सु अपि जनपदेषु सप्तत्रिंशत् सहस्रतोप्यधिकाः जनाः अत्यन्तं दुष्प्रभाविताः। शोकाकुले अस्मिन् संकटावधौ शोणितपुर जनपदस्य चारिद्वार मण्डले जले निमज्जनात् एकः जनः पञ्चत्वं गतः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रकटिता। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशी एव संकट स्थितिः उत्तर पूर्व भारते, छत्तीसगढ़ झारखण्ड पश्चिम बंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। पुरुषोणाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडांगणे भारतेन इंग्लैंड दलं षट्स्तोभैः पराजितम्। अक्षर पटेलः स्वस्य उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
2: तुलसी तुलसी सबका है तो तुलसी बन की घास। अरे तुलसी तुलसी सबका है तो तुलसी बन की घास।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: खोटा लोकगीत के साथ ही आज का लोकरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं विज्ञान वार्ता। आज का विषय है इंटरनेट के लाभ और हानि। जानकारी दे रही हैं ईशा शर्मा।
1: अगर हम इंटरनेट की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 60 के दशकों में लगभग वर्ष के 1962 से 1969 के बीच में हुई थी। इसको सबसे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने बनाया था। इसका इस्तेमाल सबसे पहले वर्ष 1969 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक संदेश भेजने के लिए किया गया था। इसके बाद यह लगभग वर्ष 1972 तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका था और फिर इसका नाम बदलकर इंटरनेट कर दिया गया था। इंटरनेट ने मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल और ज्ञानवर्धन बना दिया है। हमें इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि आज हम इन्हीं के मदद से देश दुनिया से जुड़ पा रहे हैं और विश्व के कोने कोने का ज्ञान गांव-गांव तक पहुंचा पा रहे हैं। आज हम इंटरनेट का उपयोग व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्कूलों, कॉलेजों और निजी जीवन हर क्षेत्रों में कर रहे हैं। पुराने जमाने में इंटरनेट के माध्यम से मात्र वेबसाइट ब्राउज किए जाते थे, ईमेल भेजे जाते थे, परंतु आज के इस आधुनिक युग में इंटरनेट को दुनिया के हर एक क्षेत्र में हर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इंटरनेट अब एक प्रकार से मनुष्य की जरूरत बन चुका है। इंटरनेट के लाभ और हानियों के बारे में पता होना जरूरी है। इंटरनेट के माध्यम से सकारात्मक रूप से बताया जाए तो इंटरनेट की मदद से आसानी से हम घर बैठे अपनी सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की मदद से कुछ ही मिनटों में बिजली, टेलीफोन, डीएच या ऑनलाइन शॉपिंग के सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। भले ही आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, एक जगह से दूसरी जगह कई प्रकार की जानकारियां या सूचना कुछ ही सेकंड में भेज और प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉल कर सकते हैं और साथ ही कई प्रकार के अन्य फाइल भी भेज सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अब इंटरनेट घर घर में अपनी जगह बना चुका है, इसीलिए इंटरनेट के माध्यम से अगर आप चाहे तो अपने व्यापार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। विश्व की सभी बड़ी कंपनियां अपने व्यापार को और आगे ले जाने के लिए इंटरनेट की मदद ले रहे हैं। अब नौकरियों के लिए

आवेदन और जानकारी प्राप्त करना भी बहुत आसान हो गया है। साथ ही साथ इस आधुनिक युग में अब इंटरनेट घर घर में मनोरंजन का साधन बन चुका है। इंटरनेट ने हमारे जीवन मायने पूरी तरह से बदल दिए हैं। इसने हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा दिया है और कई कार्यों को बहुत सरल और आसानी बना दिया है। हालांकि इसने कई नुकसानों को भी जन्म दिया है, लेकिन कई कठिन कामों को कुछ ही सेकंड में हल भी किया है। इंटरनेट इन दिनों हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इसने लोगों को काफी करीब ला दिया है, चाहे वह आपके दोस्त हो, परिवार के सदस्य या आपके व्यापार। इंटरनेट ने कई बदलाव लाए हैं, जिस तरह से हम रहते हैं और अपने विभिन्न कार्य करते हैं, इसने इन सब को बदल के रख दिया है। इंटरनेट ने अपने कई उपयोगों के लिए जाना जाता है और इसने लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। आज लगभग सभी चीजें ऑनलाइन हो गई है। यात्रा और पर्यटन ऐसे क्षेत्रों में से एक है जिस पर इंटरनेट का भारी प्रभाव पड़ा है। इंटरनेट ने यात्रा करने के तरीकों को बदल दिया है। इंटरनेट ने उपयोग जिस तरह से हम कर रहे हैं यात्रा में, उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। अब हम आपको बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक करवाने के लिए लंबे लाइन या समय तक खड़े रहना आवश्यक नहीं है। ऑफलाइन बुकिंग पोर्टल्स ने आपके लिए इस काम को कम किया है। होटल बुकिंग के मामले में यही मामला है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं है कि आपको अच्छा होटल मिलेगा या नहीं। किसी दूसरे शहर की यात्रा करना अब कोई परेशानी नहीं है। इसलिए इंटरनेट लोगों की जिंदगी में जरूरत बनता जा रहा है। आजकल के बच्चों को इंटरनेट की सहायता से कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो स्कूलों में भी समझा नहीं पाते हैं, पर इंटरनेट की मदद से कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य बनाते दिखाई देते हैं। वही दूसरी ओर देखा जाए तो इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव भी इस प्रकार से जुड़े हैं। समय की बर्बादी, जो लोग इंटरनेट को अपने ऑफिस के काम के लिए और जानकारी लेने के लिए उपयोग करते हैं, उनके लिए तो इंटरनेट बहुत ही लाभदायक होता है। परंतु जो लोग बिना किसी मतलब इसे अपनी आदत बना लेते हैं, उनके लिए यह समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। हमें इंटरनेट को समय के अनुसार उपयोग करना चाहिए। दुनिया में हर एक व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा है, जिससे कई प्रकार के बुरे स्वास्थ्य प्रभाव पड़ते हैं, जैसे वजन बढ़ाना, पैरों और हाथों में दर्द, आंखों में दर्द और सूखापन, मानसिक तनाव, कमर में दर्द आदि। आज की इस आधुनिक युग इंटरनेट की सहायता से ईमेल आईडी को चुरा कर कई धोखेबाज कंपनियां झूठे ईमेल भेजती है, जिनसे वो उन्हें ठगते हैं। आजकल के बच्चों पर भी इंटरनेट का अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उस समय बच्चे जो प्लास्टिक के खिलौने से खेलते थे, वह आज इंटरनेट के माध्यम से खेलने लगे हैं। इंटरनेट ने दूर देशों में रहने वाले लोगों की दूरी को कम कर दिया है, पर वही साथ में नजदीक रहने वाले लोगों को भी दूर कर दिया है। आजकल के परिवार इंटरनेट के इतने करीब हो गए हैं कि बच्चों और परिवार के सदस्यों की ओर ध्यान देना भूल गए हैं। माता पिता अपने बच्चों को इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति इसलिए देते हैं ताकि वे अपने परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सके, पर कई छात्रों ने इसका दुरुपयोग किया है, क्योंकि इंटरनेट मनोरंजन का प्रचुर स्रोत प्रदान करता है, इसलिए इसका विरोध करना कठिन है। कई छात्र इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वीडियो देखते हैं या मनोरंजन उद्देश्य के लिए ऑनलाइन गेम खेलते हैं, पर वे जल्द ही इसके आदि जाते हैं। अपना समय इंटरनेट पर कुछ देखने या खेलने पर खर्च करते रहते हैं,
यह समय की बहुत बड़ी बर्बादी होता है।

0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कठिन काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। परंतु इंटरनेट का गलत प्रयोग भी ना करें, जिससे नुकसान हो। अब मैं अंत में यह कहना चाहती हूँ, हमें इंटरनेट का प्रयोग समझ बूझ के करना चाहिए, जहाँ हमें कोई तरह की नुकसान ना हो। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे ईशा शर्मा से इंटरनेट के लाभ और हानि की जानकारी। इसी के साथ विज्ञान वार्ता का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। आइए आज सुनवाते हैं आपको इस कार्यक्रम में पंकज उदास के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

इसी के साथ गीत संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार, प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
4: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रिग्नैनी पांडे।
2: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की

0: घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्र के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुँचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकाबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकार जवाब दे। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को 6000 रुपए का एकमुश्त मानदेय देने का लिया निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए बिना अधिग्रहण के ली गई जमीन के बदले मुआवजा देने के लिए निर्देश देने से किया इनकार, कहा प्रार्थी मालिकाना हक साबित करे। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में बीआईटी सिंदरी को शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने का लिया निर्णय। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में झारखंड का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए रणनीति और विभिन्न एजेंडों पर की चर्चा। और मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कार्यों में लगे बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को 6000 रुपए का एक मुश्त मानदेय देने का निर्णय लिया है। यह राशि उन्हें मिलने वाले पारिश्रमिक के अतिरिक्त होगी। चुनाव आयोग ने इस विशेष अभियान में काम के भारी बोझ को देखते हुए यह फैसला लिया है। इस फैसले से झारखंड समेत उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ मिलेगा जहां एसआईआर चल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए कथित रूप से बिना अधिग्रहण के उपयोग में ली गई जमीन के बदले मुआवजा देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रार्थी विवादित जमीन पर अपना कानूनी मालिकाना हक साबित नहीं कर देते तब तक मुआवजे का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी आपराधिक अपील खारिज कर दी है। अदालत ने इस घटना को न्यायपालिका पर हमला बताते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में बीआईटी सिंदरी को शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार कल धनबाद में जिला प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री पुरवार ने कहा कि बीआईटी सिंदरी झारखंड की तकनीकी शिक्षा की पहचान रहा है।
1: बीआईटी सिंदरी को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। थर्ड तो बीबीएमटी यूनिवर्सिटी, इसमें भी क्योंकि नया एक्ट आया हुआ है उसकी जो गतिविधियां है उसको कैसे यहाँ पे स्टार्ट करना है ताकि जो हायर एजुकेशन इकोसिस्टम है एक मेच्योर तरीके से उसका एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं और रिसर्च को और टेक्निकल एजुकेशन को एक जैसे आईआईटीज वगैरह है उसी पैटर्न में उसको डेवलप कर रहे हैं।
0: धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच सियासत पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। दोनों नेता अपने अपने समर्थकों के साथ जनसभा और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि आज निरसा में उनकी जनसभा होगी।
2: पूर्वक पद यात्रा करके वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो एलिवेटेड रोड विकास के नाम पर रोकने का प्रयास करेगा, जो निरसा क्षेत्र को विकास का बाधक बनेगा, उसका जवाब निरसा के जनता 24 घंटा देने के लिए 15 तारीख को एक विशाल पद यात्रा का आयोजन किया गया है।
0: वहीं मार्क्सवादी समन्वय समिति विधायक अरूप चटर्जी ने भी आज अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा की।
3: उनका उद्देश्य पॉलिटिकल है तो निश्चय पॉलिटिकल की जवाब पॉलिटिकल में ही दिया जाएगा। अगर निरसा बागमारा में तमाम जगहों को छोड़कर निरसा में शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे अगर हमको या हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे तो हम लोग भी वहां अपनी शक्ति का परिचय देंगे।
0: इधर धनबाद जिला प्रशासन ने दोनों कार्यक्रमों में सुरक्षा को लेकर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने 13 सितंबर से केप टाउन में आयोजित होने वाले 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में झारखंड से भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल को लेकर कल बैठक की। इस दौरान झारखंड का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सम्मेलन की रणनीति और एजेंडा पर चर्चा की गई। सदस्यों ने राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े विषयों को सम्मेलन में

0: प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैंटीन सर्विसेज की 80वीं बैठक में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कामकाज और रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। संजय सेठ ने कहा कि CSD में किए जा रहे सुधार लाभार्थी केंद्रित हैं और आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल तथा सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा को रिम्स का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि रिम्स की व्यवस्था में कई व्यापक सुधार हुए हैं और आगे भी जारी रहेंगे।
1: कॉलेज से शूट में कैसेट टर्न हुआ, इसको हमने नजदीक से देखा है और यहाँ जो पहले पेशेंट का था, जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ये सब रहते थे, लेकिन आज सुपर स्पेशलिस्ट भी हो गए। जैसे हमारे पीडियाट्रिक सर्जन है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, और ये सब जुड़ता गया है। इसमें आज हॉस्पिटल की संख्या बढ़ गई है, ये सारा चेंजेज आया है।
0: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन CPI माओवादी को मगध जोन में दोबारा सक्रिय करने और लेवी के जरिए आर्थिक संसाधन जुटाने के मामले में रांची के विशेष NIA अदालत में छठे आरोपी चंदन कुमार के खिलाफ तीसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था। गुमला जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत रंजीत कुजूर और सेवानिवृत्त शिक्षक वत्स रविकांत को ACB की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौसम। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के विभिन्न जिलों में 18 जुलाई तक भारी बारिश, तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना है। रांची मौसम केंद्र ने आज रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित GD गोयनका स्कूल नामकुम में आयोजित 2 दिवसीय रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सप्तऋषि ने वर्ष 2026 का चैंपियन ऑफ चैंपियंस खिताब जीता, जबकि रूपश्री, अभिमन्यु पांडे, पम्मे कुमारी और मौसम कुमार को विभिन्न विशेष उपाधियों से सम्मानित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने हॉर्मुज संकट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषियों की उम्रकैद को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, खूंटी देवघर में 1,21,00,000 रूपये की अवैध निकासी की जांच करेगा CID। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, MOU करने वाली 10 कंपनियां 25,000 लोगों को देंगी रोजगार। और दैनिक जागरण ने रांची में पुलिसकर्मी को SUV वाहन से टक्कर मारने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने SIR कार्य में लगे BLO और BLO सुपरवाइजरों को 6,000 रूपये का एकमुश्त मानदेय देने का लिया निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए बिना अधिग्रहण के ली गई जमीन के बदले मुआवजा देने के लिए निर्देश देने से किया इनकार, कहा प्रार्थी मालिकाना हक साबित करे। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में BIT सिंदरी को शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने का लिया निर्णय। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में झारखंड का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए रणनीति और विभिन्न एजेंडों पर की चर्चा। और मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश का जारी किया।

अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं विनीता आपके साथ। आइए सुनते हैं लोकगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे मुंडारी लोकगीत। कलाकार हैं सोमा मुंडा और उनके साथी।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश प्रोग्राम मॉर्निंग मेलोडी।

0: चाहिए वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही मॉर्निंग मेलोडी प्रोग्राम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। साथियों, आज विश्व युवा कौशल दिवस है। ये हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशलों से सशक्त बनाना है जो उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करे। इस वर्ष की थीम है साझा भविष्य के लिए कौशल। बदलती तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में नए कौशल सीखना ही सफलता और आत्मनिर्भरता की सबसे मजबूत नींव है। तो आइए हमारी युवा साथियों को प्रेरित करते हैं इसी के लिए कौशल बनने के लिए इन्हें प्रेरित करते हैं। आइए और अब आपको सुनवाते हैं फोर्स फिल्म का गीत। के और सुचित्रा की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत हैरिस जयराज का।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
4: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
3: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम और वक्त है अंतराल का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए सोनू निगम और मी ध्रुव अंजान की आवाजों में क्या सुपर कूल हैं हम इस फिल्म का गीत। कुमार ने इस गीत को रचा है, मी ध्रुव अंजान का संगीत।

जिस्म टू फिल्म का गीत के की आवाज, आर्को प्रावो मुखर्जी और मुनीश माखीजा का के बोल, आर्को प्रावो मुखर्जी का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम कर

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी, मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है, ये उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रियाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को म्यूजिक रूम

0: घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं, और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया, और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी, और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी, और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था, और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए, और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ, एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माताजी जो साथे बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए, और उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है का माल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।
1: कर चले हम फिदा जानता

वतन साथ। दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

0: हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी दोस्तों को ममता का नमस्कार, प्रणाम, जोहार।

दोस्तों आइए जानते हैं आज के दिवस को। आज है विश्व युवा कौशल दिवस। दोस्तों आज का युग प्रतिस्पर्धा और तकनीक का युग है। केवल शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करना ही सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसी न किसी क्षेत्र में स्किल होना भी जरूरी है। कौशल युक्त व्यक्ति अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर जीवन में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकता है तथा समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौशल का अर्थ है

किसी कार्य को दक्षता और समझदारी से करने की क्षमता। आज के समय में कंप्यूटर, संचार, भाषा, नेतृत्व, समस्या समाधान, तकनीकी ज्ञान तथा समय प्रबंधन जैसे कौशलों की बहुत मांग है। ऐसे कौशल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाते हैं और रोजगार पाने की संभावना बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज अनेक कंपनियां केवल डिग्री नहीं बल्कि कार्य करने की क्षमता और व्यावहारिक ज्ञान को भी महत्व देती है। कौशलयुक्त व्यक्ति नौकरी के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय या स्टार्टअप भी शुरू कर सकता है। इससे बेरोजगारी कम होती है और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ नए नए कौशल सीखने चाहिए।

अब आइए जानते हैं आज के मौसम का हाल। आज का न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान होगा 29.3 डिग्री सेल्सियस। आज भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना रहेगी, तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।

दोस्तों, सशक्त समाज की आधारशिला ईमानदारी और नैतिक मूल्य किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। सत्य, ईमानदारी, दया, करुणा, अनुशासन, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। जब समाज के लोग इन मूल्यों का पालन करते हैं, तब समाज में विश्वास, शांति और सद्भाव बना रहता है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा सत्य का साथ देता है और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। ऐसे लोगों पर परिवार, समाज और देश सभी विश्वास करते हैं। ईमानदारी से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे सम्मान प्राप्त होता है। दोस्तों, एक स्वस्थ समाज वही है जहां लोग एक दूसरे पर विश्वास करें, नियमों का पालन करें और सभी के अधिकारों का सम्मान करें। ईमानदार और नैतिक नागरिक समाज में शांति, समानता और न्याय की स्थापना करते हैं। ऐसे समाज में विकास के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होती हैं।

आसपास की गतिविधियों के बारे में। हजारीबाग में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर है। आईआईटी के छात्र आधुनिक तकनीक से दे रहे हैं रथ को स्वरूप। कल निकलेगी रथ यात्रा। 7 फुट ऊंची होगी महाप्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा। प्रमंडल स्तरीय 65वीं सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई। अंडर 15 में रामगढ़, अंडर 17 में बालक, गिरिडीह व बालिका में हजारीबाग विजेता रहा। प्रमंडल स्तरीय 65वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता मंगलवार को करजन ग्राउंड में संपन्न हुई। अंडर 15 बालक वर्ग में रामगढ़ जिला, अंडर 17 बालक में गिरिडीह जिला और अंडर 17 बालिका वर्ग में मेजबान हजारीबाग जिला चैंपियन रहा। फाइनल मैच करजन ग्राउंड में खेला गया। अंडर 17 बालिका के फाइनल मैच में हजारीबाग ने चतरा को 2-0 से हराया। अंडर 15 बालक के पेनल्टी शूटआउट में रामगढ़ ने हजारीबाग को पराजित कर प्रमंडल स्तरीय चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। अंडर 17 बालक वर्ग के फाइनल में गिरिडीह ने चतरा को 2-0 से हरा दिया।

आइए जानते हैं आज के इतिहास को। आज के दिन 1903 में लक्ष्मी मजूमदार का जन्म हुआ था, जो कि एक समाज सेवी एवं स्काउट्स एवं गाइड्स की स्थापना की थी। सन 1909 में कैप्टन लक्ष्मी सहगल सेना अधिकारी थी, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन सन 1948 में डीबीसी की स्थापना हुई थी। 1960 में ऊर्जा विकास कार्यक्रम को गति दी गई। 2022 में आज के दिन पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा गया।

आइए जानते हैं आज का विचार। कौशल वह शक्ति है जो सपनों को सफलता में बदल देती है।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से ममता को अनुमति दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जोहार।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स

0: हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: अभी आप सुन रहे थे हेलो हजारीबाग। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो

से तू पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे, चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है, कभी जो कम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत।

0: हम उस दिन भी आएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे,
1: बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे अधिकार फिल्म से। रमेश पंत ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं रंग तरंग। लीजिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश।

0: जितिन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।
3: Come again, come again.

मेड इन इंडिया, ये था एल्बम का नाम और अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बिटू का संगीत था। इस वक्त आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, दीवाना एल्बम का नाम था। साजिद वाजिद ने म्यूजिक दिया और फैज अनवर ने इसे लिखा था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: कार्यक्रम रंग तरंग की ये पेशकश थी दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और ये है उसकी अगली पेशकश।

हम किसी से कम नहीं, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरूआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज

0: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
1: The Security Council has been ineffective.
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए हुर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हुर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे आशी की फिल्म से। समीर ने इसे लिखा और नदीम श्रवण का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जो जिंदगी से जुड़े हैं और जीवन से जुड़े हैं, ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिलहाल फेरिस्त में ये अगला गीत।

भूपिंदर और अनुराधा पौड़वाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दूरियां फिल्म का नाम था, सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा। अब वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।

0: डियर जिंदगी, ये था फिल्म का नाम। जसलीन की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, कौसर मुनीर ने इसे लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी और जीवन शीर्षक से जुड़े गीत।
4: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से

0: पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: प्रोग्राम यादों की महफिल की अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

मेरी जंग इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

ऐसी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश

0: उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी कसूर। समीर ने इस गीत को लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मासूम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनूप घोषाल की आवाज में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था आर डी बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक पोस्ट या इबारत टेक्स्ट की जाती है, पोस्ट की जाती है, और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही उन शब्दों में से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से गीत बन रहे हैं, वो लिखना होता है अपने FB कमेंट्स पर। आपके प्यार भरे संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं और मैंने पढ़ भी लिए हैं। बहुत सारे गीत आपने फहरिस्त बनाकर लिखी है वहां पर, और बहुत सारे गीत मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेल खा रहे हैं, लेकिन जिनके मेल नहीं खा रहे हैं वो सुनिए, हमारे सवालों का जवाब भी दें और फिर वहां पर कमेंट कर सकते हैं। हम आएंगे आपकी लिस्ट पर भी, देखते हैं हमारी और आपकी लिस्ट कितनी मेल खाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस प्रोग्राम की, लेकिन उन लोगों के लिए, उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है, हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार थी, सितम हो चाहे कितने भी, इस दिल को अब रोको ना यार, रिश्ता अगर सच्चा हो तो हर दर्द भी बन जाता है प्यार, कहीं ठहर जाए ऐसा समा जहां रोज रोज खेले नए ख्वाब, यादें चुपके से आकर मेरी पलकों पर उतर जाएं हर रात, रिश्ता कोई नाम का मोहताज नहीं होता, मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होता, मन को छूकर मेरे ठहर जाओ तो कभी, मोहब्बत का मौसम यूं ही नाराज नहीं होता, कोई रोको ना इन उड़ते ख्वाबों के समा को, पलकों तले रोज रोज ऐसा ख्वाब नहीं होता। तो बताइए जल्दी से कि कौन से शब्द आपने चुने हैं और कौन से गीत उनसे बन पाएंगे, और शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, उसके बाद आएंगे आपके संदेशों पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। आंखें फिल्म से साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत। वैसे इस गीत को बहुत से श्रोताओं ने समझ लिया था, जान लिया था और लिख भी दिया था, तो सबसे ज्यादा जो कमेंट्स हमारे पास आए इसी एक गीत के जो भी आपने सुना है उसके आए थे। और बहुत से प्यारे प्यारे संदेश हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कितने अनमोल है ये रिश्ते, कोई याद न करे तो भी उनसे मिलने की एक उम्मीद रहती है, हमारे श्रोतागण लिखते हैं। और सचमुच यही रिश्ता है आपका, आप श्रोताओं का हमसे, यानी कि विविध भारती से, ये हमेशा बना रहे। एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम दिल रिश्ता यार, इन शब्दों से सजे आज गीत सुनेंगे और एंजॉय करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश तीन अलग अलग भावनाओं को बयां करता हुआ प्रतीत हो चला है, जहां एक ओर सच्चे रिश्ते की आहट है तो दूसरी ओर प्यार की दास्तां, और वहीं तीसरा पहलू यादों और ख्वाबों की दुनिया रच रहा है, यानी जीवन के मिश्रित एहसासों को समेटे हुए यादों और ख्वाबों से सजाए हुए प्यार के रिश्ते जीवन यात्रा को अनंत अभिलाषा और इच्छाओं तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, ये सभी मिले जुले रूप आज आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि काश प्यार ना किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि पहले कर्म फिर सितम फिर अपने प्यार के लिए रोना गिड़गिड़ाना। अरे भाई,
1: है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार, एनसीईआरटी और सीबीएसई से मांगा जवाब। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का और मूरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जुलाई को करेंगे लोकार्पण। पुलिस मुख्यालय ने लापता और बरामदगी से संबंधित मामलों की निगरानी और अनुसंधान के लिए सभी जिलों को स्थायी मॉनिटरिंग सेल गठित कर रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। राज्यभर में रथ यात्रा महोत्सव कल से होगा शुरू, आज एकांतवास से बाहर लाकर भगवान जगन्नाथ के विग्रहों का किया जाएगा नेत्रदान। और झारखंड में मॉनसून की बारिश सामान्य स्तर से नीचे, पूरे राज्य में अब तक 41% कम हुई बारिश, धान समेत खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनसीईआरटी, सीबीएसई से उन 2 नई याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी नीति को चुनौती दी गई है। 1 सप्ताह बाद अगली सुनवाई की तिथि तय की गई है। इधर सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई भाषा नीति जारी की है। सत्र 2027-28 से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, लेकिन स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में पास होना अनिवार्य होगा। इसमें फेल होने पर 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची मंडल के पिस्का और मूरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जुलाई को दोनों स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि दोनों स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन स्टेशनों में विशेष सुविधाएं होंगी।
2: रांची मंडल के अंतर्गत आने वाले पिस्का और मूरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा होते ही इसके उद्घाटन की तैयारी शुरू कर दी गई है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए इन दोनों स्टेशनों को नया और काफी आकर्षक रूप दिया गया है। यहाँ बेहतर प्रवेश द्वार, विकसित प्लेटफॉर्म, आधुनिक शेल्टर, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, बेहतर रोशनी, यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी समेत कई सुविधाएं होंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विभागीय कार्यवाही में अंतिम दंड का आदेश पारित होने के बाद सिर्फ आपराधिक मामला लंबित होने पर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की अंतिम पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार और महालेखाकार को 6 सप्ताह के भीतर अंतिम पेंशन भुगतान का निर्देश दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कल शाम रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां की विधिवत पूजा अर्चना की और झारखंड और देशवासियों के लिए खुशहाली मांगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मां छिन्नमस्तिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी शक्ति दें कि उनके नेतृत्व में भारत 2047 तक दुनिया का सबसे सशक्त और विकसित राष्ट्र बने।
3: भगवान से माँ से मांगते कि माँ आशीर्वाद तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो और शक्तिशाली हो, बलशाली हो और दीर्घायु हो और 2047 जो उनका सपना है दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र वो राष्ट्र बने। उन्हें देश तो देखो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बना रहे।
1: पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर खूंटी बाईपास सहित झारखंड की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि खूंटी बाईपास के निर्माण से क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, यातायात का दबाव कम होगा और आदिवासी क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान परियोजना के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशाह मिश्रा ने लापता और बरामदगी से जुड़े मामलों की निगरानी और अनुसंधान के लिए सभी जिलों में स्थायी मॉनिटरिंग सेल का गठन कर अनुपालन रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सभी एसएसपी और जिलों के एसपी को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रत्येक जिले में डीएसपी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय मॉनिटरिंग टीम होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम बोर्ड की 3 महीने से बैठक नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अपर नगर आयुक्त को पत्र लिखकर जल्द बोर्ड बैठक बुलाने और 16 अप्रैल को हुई पहली बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है। श्री राय ने कहा कि हर महीने कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठकें नहीं होने से नगर निगम के प्रशासनिक और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा महोत्सव कल से शुरू हो रहा है। इससे पूर्व आज भगवान के विग्रह को एकांतवास से बाहर लाया जाएगा और शाम 4 बजे से नेत्रदान उत्सव शुरू होगा जो देर रात चलेगा। अगले दिन भव्य रथ पर सवार कर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों को मौसीबाड़ी ले जाया जाएगा। रथ यात्रा तथा मेले के सफल आयोजन को लेकर कल डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी

0: केश रंजन ने रथ यात्रा मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। इस्कॉन जमशेदपुर की ओर से कल भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा गोपाल मैदान, जिसको गोल चक्कर, स्ट्रेट माइल रोड, केमिस्ट चौक और साक्षी बाजार चौक सहित विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। इस्कॉन के सदस्य ने बताया कि पिछले एक महीने से आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
1: यात्रा बिष्टुपुर राम मंदिर से प्रारंभ होकर आपका बिष्टुपुर मुख्य गोल चक्कर होते हुए रीगल गोल चक्कर, रीगल गोल चक्कर से आगे आपका जुस्को गोल चक्कर, जुस्को गोल चक्कर से सीधा कीनम स्टेडियम होते हुए साक्षी गोल चक्कर होते हुए साक्षी पार्किंग जाके समाप्त होते हैं। देखिए, इस पूरे गतिविधियों में अगर बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरे जमशेदपुर का वातावरण हरे राम हरे कृष्ण के वातावरण से गूंजेगा।
0: हजारीबाग जिले की बरही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रसोईया धमना के पास कल विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया। मामले में पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राधा प्रेम किशोर ने दी।
2: जब रसोईया धमना के पास हमारी टीम पहुंची तो वहां हम लोगों ने देखा कि ये ट्रक है और एक छोटी गाड़ी है क्रेटा, जिसमें कुछ लोग पुलिस की टीम को देख के भागना शुरू किए। पकड़ा गया और पकड़ने के उपरांत जब उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि शराब की का जो खेप ये बिहार की ओर ले जा रहे हैं। तीन लोगों की गिरफ्तारी। देखिए, लगभग अभी तक जो हम लोगों के पास अनुमान जो है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपये के आसपास।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपए प्रति किलो है। झारखंड के सभी 24 जिलों में मौसम विभाग के अनुसार औसतन 41% कम बारिश हुई है। कम बारिश वाले जिलों में सबसे अधिक प्रभावित गढ़वा, चतरा, कोडरमा, पाकुड़, देवघर और हजारीबाग हैं। हमारे चतरा संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले 14 दिनों में केवल 47 मिलीमीटर बारिश हुई है।
3: चतरा जिले में वर्षा की कमी का असर सबसे अधिक धान की खेती पर दिख रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक आर्यन मिश्रा ने बताया कि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की खेती के साथ साथ अन्य खरीफ फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार के अनुसार जिले में अब तक 90% धान का बिचड़ा तैयार हुआ है, लेकिन बारिश की कमी के कारण उसकी रोपाई नहीं हो पा रही है। इससे धान के बिचड़े सूखने लगे हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
0: और अब मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार, एनसीईआरटी और सीबीएसई से मांगा जवाब। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जुलाई को करेंगे लोकार्पण। पुलिस मुख्यालय ने लापता और बरामदगी से संबंधित मामलों की निगरानी और अनुसंधान के लिए सभी जिलों को स्थायी मॉनिटरिंग सेल गठित कर रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। राज्यभर में रथ यात्रा महोत्सव कल से होगा शुरू। आज एकांतवास से बाहर लाकर भगवान जगन्नाथ के विग्रहों का किया जाएगा नेत्रदान। और झारखंड में मॉनसून की बारिश सामान्य स्तर से नीचे, पूरे राज्य में अब तक 41% कम हुई बारिश। धान समेत खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जमीन आसमां। इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी, जैसा कि आप सब लोगों ने अपने संदेशों में भी लिखा है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि क्या बात है, उनकी फहरिस्त से मिलते जुलता ये तीसरे नंबर का गीत भी शामिल हो गया है, ऐसा समाना होता, और बहुत दिनों के बाद ये हैट्रिक लगी है और वो बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। दूसरे श्रोता हमारे एक लिखते हैं धुनों के बारे में, और उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम के शुरुआत में अनाउंसमेंट उद्घोषणा के पहले जो हमने फिलर बजाया था उसके बारे में वर्णन किया है, साथ ही साथ उन्होंने और भी जो हमने फिलर्स बजाए थे उसके बारे में लिखा है और पूरा जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।

ऐसा समाना होता, इसमें भी ये बेहतरीन बांसुरी का प्रीलूड यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, रोनू मजूमदार जी ने बजाया, साथ में गिटार और वाइब्रेटोन, ऐसा समाना होता। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है जब हमें ये सब आप लिखकर भेजते हैं, और अच्छा लगता है कि गीतों के साथ साथ जो म्यूज़िक या फिर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं उसके बारे में भी आप सोचते हैं, उसे इतने संजीदा तरीके से सुनते हैं और लिखते हैं। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सितम करने वाले से ज्यादा सितम सहने वाले को पता होता है, फिर भी वो सहता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई दूर हो या पास, पर प्यार उसके लिए हमेशा हो, कभी साथ कभी दूर, लेकिन हर परिस्थिति में प्यार होना बहुत जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए सुरीला सफर को आगे बढ़ाते हैं और ये अगला गीत सुनते हैं। इसमें आप मुझे बताएं कि अभिनेता और अभिनेत्री इस गीत को जिन पर फिल्माया गया है वो कौन है, वो मुझे लिख भेजिए। और साथ ही साथ हम जहां परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि मौसम किस तरह से बदल जाता है, कभी बहुत ज्यादा भीषण गर्मी थी, फिर बरसात आई तो बस बरसात ही बरसात, उससे परेशान हो गए कुछ लोग लगातार बारिश से, और अब मौसम बहुत खुशगवार है। तो ये जो बदलाव है, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन हमें करने होते हैं अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए। कुछ ऐसे आदतें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी सेहत में ठीक हो, अच्छी हो, इसीलिए अपनाते हैं, हालांकि वो हमें कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें उन्हें अपनाते हैं। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और जो आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छी है,

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में ये नाखुदा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे और आपका अंदाजा एकदम सही है, बिल्कुल ये फिल्म आया गया है राजकिरण और स्वरूप संपत पर, बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर चल रहा है जिसमें विविध भारती के गीतों की झड़ी लगी है, सचमुच सुरीले सफर में एक से बढ़कर एक गीत है और दिल को खुश कर देते हैं ये गीत, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां पर आदत की बात की गई वहां सुबह सूरज के उगते उगने से पहले जाग जाते हैं और ध्यान योग करते हैं, दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से आपका जो स्वास्थ्य है और आयु है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि समय कोई बांध नहीं सकता क्योंकि निरंतर चलता रहता है, हम सभी को समय के साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसी आदत है जो हमें जरूर शामिल करनी चाहिए अपनी जिंदगियों में और अक्सर हम समय की कद्र थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं या फिर हमारी जो टाइमलाइंस होती है जो हमने अपने आप को वक्त दिया रहता है उस वक्त से भी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, समय पर अपना काम समाप्त नहीं करते जिससे कि बाद में वो जो काम है वो बस इकट्ठा होता चला जाता है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और इन सब चीज़ों का परेशानियों का सबब बनता है। तो ज़रूर जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, समय को किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, लेकिन मौसम है, मौसम तो बदलेगा जरूर, मौसम निरंतर चलता रहता है और लेकिन बदलता भी रहता है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बारिश भी जल्द ही होगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन वो उठते हैं क्योंकि पूजा और योग दोनों रह जाते हैं नहीं तो, और फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि ना तो योग किया और ना ठीक से पूजा की और फिर दूसरे जो काम है वो सब रहते हैं। तो हालांकि इन्हें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शुमार किया है कि जल्दी उठना है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि कुछ दिन यानी कि 21 दिन तक अगर आप एक आदत को करें तो वो फिर आपकी ज़िंदगी में दिनचर्या में शामिल हो जाती है। तो बस वो जो शुरुआत के कुछ दिन हैं, शुरुआत के कुछ स्टेप्स हैं, शुरुआत के कुछ कदम हैं, बस वो उठाने में वक्त लगता है। बिल्कुल। सुरीला सफर में अब दिल को छू देने वाला एक और गीत आपको सुनवाते हैं। वैसे तो सभी गीत दिल को छू लेते हैं लेकिन ये गीत यहां पर एक शब्द छुपा है।

बिल्कुल सही। और कहते हैं ना कि मौके और मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो मौका या मुसीबत कुछ भी आए उसके लिए आप हमेशा से तैयार रहिए। और बचत तो बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बुजुर्गों के लिए नियमित मॉर्निंग वॉक ही स्वस्थ रहने का एकमात्र विकल्प है, और ये प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर या अधिक से अधिक 8 किलोमीटर वॉक करते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सुबह उठकर छत पर बैठ जाते हैं और योगासन करते हैं, ध्यान करना अच्छा लगता है, और जब सूर्य देवता उदय होने लगते हैं तभी वो सूर्य नमस्कार करते हैं, और कुछ देर तक सूरज की किरणों को देखना भी अत्यंत सुख देता है जो कि नेत्र ज्योति में भी बढ़ावा करता है, वृद्धि करता है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि ऐसे ही कुछ एक चीजें हैं जो वो पहले कतराते थे करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने छोटी छोटी आदतों से शुरुआत की है अपनी जिंदगी में उन्हें शामिल करने की, क्योंकि वो अच्छी है। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी चीजें तो आप बता ही रहे, लेकिन इसके अलावा और भी आदतें आप हमें बता सकते हैं, जैसे कि किसी चीज को ना कहना। ऐसा भी होता है कि हम किसी के कहने पे वो चीज़ करते चले जाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता है, या फिर हमें उतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन अगर अगले को बुरा लग जाए तो, रिश्ता टूट जाए तो, किसी को अपमानजनक लगे तो, हम उन चीज़ों को करते चले जाते हैं बगैर मन के और बगैर क्षमता के, तो ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी से भी सीखें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, वो भी आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फिलहाल हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

सनम तेरी कसम इस फिल्म से ये गीत था। किशोर कुमार की आवाज में गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसीलिए तो ये गाना बना है नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे कि हम नाना भी करते हैं लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि हंसने से पीड़ा दूर होती है, तो हंसना जरूर चाहिए, ये एक ऐसी आदत है जिसे अपनी जिंदगी में जरूर जरूर शामिल करना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सालों पहले उन्होंने भावनगर वैशाली टॉकीज में याराना और कालिया एक साथ देखी थी और इन्हें ये गीत सुनकर वो याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि छू के मेरे मन को ये गीत जो था ये प्रेम अपनापन और भावनाओं की कोमलता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इसकी धुन और शब्द दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो श्रोता के मन में मधुर यादें और भावनाएं जगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब आदत की बात आती है तो शाम को खाना बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो हम ये जो चीज़ है जो हम बदल नहीं सकते उसमें कुछ और छोटा मोटा बदलाव ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें आरामदायक महसूस हो, कुछ आराम आए, क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा ना, आप नहीं तो किसी और को खाना बनाना, खाना ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर कि अपनी आरामदायक तरीके से और अपनी कन्वीनियंस से जिसे कहते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बदलाव में सब करने को तैयार हूं परंतु विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने में कभी भी बदलाव नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे संदेश के लिए, आपके इस प्यार के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें पसंद होता है वो बाकी सबको पसंद नहीं होता, जैसे कि बहुत तेज आवाज में गीत चलाना, बच्चों को अपना सुनना होता है और कोई और कुछ और सुनना चाहता है, तो ऐसे में जो घर है उसमें जो आवाजों का जो युद्ध छिड़ता है उसकी बात ही अलग हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी खुशी के लिए मोबाइल पर सुन लेते हैं धीमे आवाज में। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो बदलाव है छोटे छोटे जिसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं ये भी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में बड़े दिल वाला इस फिल्म से गीत सुन रहे थे। आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते और प्यार पर आज सुरीला सफर उन्हें बहुत पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये भी लिखते हैं एक श्रोता कि जो बात हमें ठीक नहीं लगती उसके लिए ना कह देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात जो हमें गलत लग रही है सामने वाले का दृष्टिकोण एकदम अलग होता है, सही होता है, तो हमें दोनों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सही गलत का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता लिखते हैं कि कहो कैसे रास्ता भूल गए, ये जो गीत है ये सुनते ही उन्हें अचानक ऐसा लगा ये गीत तो सोचा भी नहीं था, तो ये गीत उनके लिए बड़ा अच्छा वाला शौक था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम बिल्कुल जानबूझकर आते हैं, रास्ता भूलकर नहीं आते हैं और बार बार आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आषाढ़ की दोपहरी को गुलजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

उन्हें आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। एक और श्रोता कहते हैं उनकी सबसे बड़ी बुरी आदत यह है कि सुबह से उठकर रेडियो का कान मरोड़ते हैं और इस आदत से पूरा घर परेशान है क्योंकि उन्हें सुबह सुबह गीत सुनना पसंद नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो आपकी बुरी आदत जो दूसरों को बुरी लगती है लेकिन बुरी नहीं है, इसे बरकरार रखिए, इसे बिल्कुल भी ना बदलें।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं युवा कौशल पर। दोस्तों युवाओं के सपनों को पंख तो लग जाते हैं, लेकिन उड़ान भरने में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नए दौर में युवाओं के पास अकूत की प्रतिभा है, बस उन्हें दिशा देने की जरूरत है। तकनीकी और बौद्धिक दृष्टि से आज के युवा जहां बहुत समृद्ध हुए हैं, वहीं उनके कदम भटक भी रहे हैं। करियर के चुनाव में उन्हें दिक्कतें भी आ रही हैं। सोशल मीडिया भी युवाओं के मन को भटकने में अहम भूमिका निभा रही है। तो आइए आज जरा सोचें कि किस तरह हमारे युवा आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा को अंजाम दें।

दोस्तों, किसी ने कहा है, प्रतिभा जन्मजात हो सकती है, लेकिन कौशल लगातार अभ्यास और सीखने से विकसित होता है। हर युवा अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए कुछ ऐसे सोपान हैं जो हर युवा को अपने व्यक्तित्व और कौशल को निखारने में मदद करते हैं। जैसे कि पहला सोपान, स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण। जब मंजिल स्पष्ट होती है तो रास्ता भी आसान हो जाता है। इसके अलावा निरंतर सीखने की आदत, बदलते समय के साथ स्वयं को अपडेट रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तीसरा सोपान है अनुशासन और समय प्रबंधन। समय का सदुपयोग ही सफलता की नींव रखता है। चौथा सोपान है संवाद और आत्मविश्वास। अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना भी एक महत्वपूर्ण कला है। और पांचवा सोपान है तकनीकी और डिजिटल दक्षता, क्योंकि आज का युग तकनीक का युग है। और आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि सकारात्मक सोच रखें, धैर्य और लगातार अभ्यास करें। यही वो गुण हैं जो किसी भी युवा को साधारण से असाधारण बना सकते हैं।

0: अपने लिए।
1: दोस्तों, आज का युग डिजिटल और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था का युग है। ऐसे में रोजगार के अवसर भी तेजी से बदल रहे हैं। अब केवल पारंपरिक नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय युवा अपने कौशल के बल पर रोजगार तलाशते हैं। वो अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं। यदि युवा तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता, वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में वे प्रशिक्षण पा सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिशियन, सोलर पैनल टेक्नीशियन, ड्रोन संचालक और CNC मशीन, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग जैसे तकनीकी कौशल भी आज रोजगार की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। जरूरत है उन्हें अपनी प्रतिभा जानने और पहचानने की। सरकार की ओर से भी बहुत सारे संस्थानों द्वारा बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। युवाओं को चाहिए कि वे इनका लाभ उठाएं और कम समय में अच्छे रोजगार तलाश सकें। जो युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं, वे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सेवाएं ले सकते हैं, ई कॉमर्स, डिजिटल कंटेंट निर्माण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपना व्यवसाय भी वे चला सकते हैं। तो युवाओं के सामने रास्ते बहुत सारे हैं, बस जरूरत है कि सही रास्ता वो चुन सकें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम

0: करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने

0: और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आग्रह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
2: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया।

0: फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्यासा फिल्म से आप सुन रहे थे गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे और इसकी अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

0: फिल्म वक्त से अभी आप ये गीत सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे श्री 420 से। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बीआईटी मिश्रा के स्थापना दिवस पर संस्थान के 7 दशकों के शैक्षणिक व तकनीकी योगदान की सराहना की। उन्होंने एनईपी 2020 के तहत युवाओं को एआई और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों से जोड़कर जॉब क्रिएटर्स बनाने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में भूमिका निभाने का आह्वान किया। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपना एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा किया। जागरूक मतदाता सशक्त लोकतंत्र का संदेश देते हुए उन्होंने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया में भाग लेने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। जमशेदपुर के चर्चित बिष्टुपुर डीडी बार गोलीकांड और हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों राघवेंद्र कुमार और गणेश मछुआ को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपियों ने मुख्य हमलावरों को छुपाने और फरार कराने में मदद की थी, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है। इस मामले में अब तक कुल 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
1: 27 जून 2026 को जो डीडी बार वाली घटना, उसमें काफी सारे अभियुक्त थे जिनको गिरफ्तारी लगातार की जा रही, और इस क्रम में अब तक कुल 14 प्राथमिकी और अपराधी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका। एक और व्यक्ति को पकड़ना बाकी था, उसको भी फाइनली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, और इसके साथ साथ एक और व्यक्ति है जो उसको सहयोग देने में और वाहन उपलब्ध करवाने में अन्य प्रकार से इसकी संलिप्तता पाई गई थी, इसको भी आगे फॉरवर्ड किया जाएगा पुलिस द्वारा।
0: रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने बीती रात सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी और ओडी प्रभारी के अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं अरगोड़ा थाने का गेट बंद मिलने पर एसएसपी ने आम जनता की सुविधा के लिए इसे 24 घंटे खुला रखने का सख्त निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी के कर्रा रोड स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधाओं के कारण आमजन का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। आज केंद्र में बच्चों का टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की रूटीन जांच कर आयरन की गोलियां दी गई। डॉक्टरों के अनुसार मलेरिया, टीबी और सामान्य बीमारियों के इलाज एवं सुलभ दवाओं की उपलब्धता से रोजाना बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं।
2: यह मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और ट्यूबरकुलोसिस जांच किया जाता है। ये बस ओपीडी सेंटर है और यहाँ हर मेडिसिन उपलब्ध है। यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है सरकार की तरफ से। पेशेंट को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। पेशेंट ठीक भी होता है, पेशेंट खुश भी रहता है। ज्यादातर पेशेंट यहाँ शुगर बीपी का दिया जाता है। बच्चों का भीड़ लगता है, हमेशा यहाँ टीकाकरण होता है।
0: गिरिडीह जिले में आज 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो जीटी रोड पर हुई, जहां मालवाहक वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की जान चली गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं तीसरी थाना क्षेत्र में एक 4-पहिया वाहन और मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण सीधी टक्कर में 2 स्थानीय युवकों की मौत हो गई। राज्य में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राजधानी रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज नेत्रदान उत्सव के साथ भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों विग्रहों का अनुष्ठान शुरू हो गया है। शाम 5 बजे 108 दीपों की महाआरती के साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे। वहीं कल शाम भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा, जो 25 जुलाई को वापस लौटेगी। इधर हजारीबाग में कल इस्कॉन द्वारा 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक से बने रथ पर यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, जिसमें विशेष पहांडी दर्शन और कोलकाता की टीम द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति मुख्य आकर्षण होंगे। मौसम केंद्र रांची ने तात्कालिक पूर्वानुमान जारी कर राज्य के चतरा, गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 1 से 3 घंटे में इन जिलों के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और सुनने वाली हमारी सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को प्यार भरा मंजरी का नमस्कार। और थोड़ा सा आप कहेंगे अच्छा अच्छा सा भीनी भीनी हवाएं आए सब तरफ और बादल भी आए, जहां पानी नहीं बरस रहा वहां बरसे,
1: ये हम प्रार्थना करते हैं,
2: ये प्रार्थना करते हैं और ये दिली तमन्ना भी है। और देखो ना, बादलों का जो परिवार था ना वो इधर से उधर चला गया,
1: यानी हमारे साथ में लुका छिपी खेल रहे हैं बादल। हाँ, है ना?
2: अभी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब यहाँ बहुत बरस ली, अब चलो चलते कहीं और, तो कहीं और चले गए। लेकिन कभी ना कभी रात में आके थोड़ा बहुत बरस जाते हैं,
1: और जब रुक जाती है बारिश तो हम पसीने से भीग जाते हैं।
2: बिल्कुल, तो मौसम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मौसम में अपनी सावधानियां भी बहुत जरूरी होती है ना।
1: बहुत सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि छाता रख लिया जाए, फिर ऐसा लगता है अरे छाता फालतू में रख लिया, हमें तो गॉगल रखना था।
2: सही बात है। और देखो इसी के साथ देखो हम लोग अपने विषय की ओर भी बढ़ चलते हैं। जी, हमें ध्यान रखना है कि भाई आज तो मकई के व्यंजन के बारे में बातें होंगी। हमारे साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी है।
1: हाँ, बहुत सारे हमारे साथियों ने मकई के व्यंजन लिखकर भेजे हैं, पर जब झमाझम बारिश होती है ना उसी वक्त वो मकई के व्यंजन खाने में और भी आनंद आ जाता है। हालांकि बाजार में बहुत सारी नरम नरम मुलायम सी मकई के दाने आ चुके हैं, तो जब बारिश गिरेगी ना तो उस वक्त मकई के पकौड़े बनाएंगे, उसकी चाट तो बनती ही है, और बहुत सारे मीठे व्यंजन भी मकई के बनते हैं। वैसे हमारे
2: मकई का हलवा, मकई का सूप बनता है,
1: मकई की खीर,
2: यानी अनंत है। और फिर देखो हमारी बातें होंगी पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र, ये भी बड़ा प्यारा सा विषय है और सबके विचार भी आ गए हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा प्यारा सा पड़ोसी है, अच्छा मित्र है, ये भी बता

0: सकते हैं।
1: और साथ में मंजरी, जब पड़ोसी का जिक्र चलता है तो व्यंजन जो है ना कटोरी में डाल के पड़ोसियों को भी दिए जाते
0: हैं। होता है और साथ में कभी कभी चीनी खत्म हो गई, चाय की
1: हाँ।
0: इसका भी तो होता
1: और
0: है।
1: वो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा, पर उसमें जो प्यार होता था ना,
0: हाँ।
1: उसमें जो उस उनकी जो छोटी सी एक कटोरी भर के जो व्यंजन आता था ना, उससे जो हम इतने, हम घर में भी लड़ाई होती कि अरे थोड़ा मेरे लिए भी रखना। वो आंटी जो पड़ोस वाली आंटी, उनकी जो फलानी फलानी सब्जी है वो बहुत अच्छी लगती है, तो ये आदान प्रदान फिर से अगर शुरू हो जाए तो उसमें क्या बात होगी।
0: कहीं कहीं पे तो देखो सोनाली होता भी है, अभी भी हमारे जो अच्छे अच्छे पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बना के देते रहते हैं। और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें भाई हिम्मत की बात होगी।
1: और जब हम कभी संकट में आ जाते हैं, संकट की घड़ी आप पड़ती है हमारे जीवन में, उस वक्त हमें हिम्मत देने के लिए हमारे पड़ोसी ही सबसे पहले आते हैं।
0: बिल्कुल। और साड़ियों का संसार, इसमें सोनाली आज किस साड़ी की बात करने वाले हैं हम लोग?
1: आज हम अरनी सिल्क की जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे श्रोता भाइयों ने, हमारी बहनों ने इस विषय में भी बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिए।
0: अच्छा, अरनी साड़ी को अरनी भी और अरनी दोनों भी बोला जाता
1: है, अरनी भी कहते हैं और अरनी भी कहते हैं
0: जी। और विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं आज हम, तो सबसे पहले तो विश्व युवा कौशल दिवस की सभी को बधाई दे देते हैं कि सब लोग के बच्चे जो है वो अपने अपने हुनर से आगे बढ़े, है ना,
1: और खूब तरक्की करें
0: और हम लोग आगे बढ़ते हैं गीत के साथ,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम भी चलते हैं।
1: बिल्कुल, विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं और हर वर्ष सोनाली 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी ताकि युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और सतत विकास के लिए आवश्यक कौशलों के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है। आज इतने सारे तकनीकी कोर्स उपलब्ध हो गए हैं कि युवाओं को बेहतर करियर के लिए वो उनको अपनी रुचि अनुसार चुन सकते हैं। जैसे पहले होता था ना कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और बैंक जॉब के बारे में, या बिजनेस कर लेंगे या दुकान खोल लेंगे जैसा सोचा जाता था। इनके अलावा भी बहुत से कोर्स हैं, लोगों की सोच बदली है क्योंकि आज इंटरनेट जुड़ गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को रोजगार परक एवं तकनीकी कौशल प्रदान करना। यानी कि समय के साथ साथ बदलाव हुआ है और हमारे युवाओं ने भी, युवतियों ने भी इस चीज को स्वीकारा है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं को कुछ कौशल सीखने चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो संचार कौशल, यानी अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहना और दूसरों को ध्यान से सुनना। साथ ही डिजिटल कौशल, यानी डिजिटल स्किल की बात की जाए तो उसमें कंप्यूटर है, फिर इंटरनेट है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सुरक्षा है और नई तकनीकों का उपयोग करना। साथ ही एआई की समझ, एआई टूल्स की जिम्मेदारी से उपयोग और उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल, और समस्या समाधान और तार्किक सोच, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स की बात की जाती है तो टीम का मार्गदर्शन करना और जिम्मेदारी निभाना भी युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। और टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और सहयोग की भावना रखना, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो भी बहुत मायने रखती है। और समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग कर लक्ष्य, समय पर जो लक्ष्य होता बांधा किया जाता है उसको पूरा करना होता है।
0: और साथ ही वित्तीय साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी बजट बनाना, बचत, निवेश और धन का सही प्रबंधन। साथ ही उद्यमिता, यानी नए विचारों को व्यवसाय में बदलने और रोजगार सृजित करने की क्षमता रखना। साथ ही रचनात्मकता और नवाचार, यानी नए विचारों पर काम करना, अलग अलग सोच को विकसित करना। और साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और संतुलित व्यवहार करना।
1: बिल्कुल, और सुनाली इसके साथ साथ भाषा कौशल, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का ज्ञान, अनुकूलन क्षमता, यानी बदलती परिस्थितियों और नई तकनीकों के साथ स्वयं को बदलना या ढालना, प्रस्तुतिकरण और सार्वजनिक भाषण, यानी आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने अपने विचार रखना, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मविश्वास, धैर्य, निर्णय क्षमता और सकारात्मक सोच को समझना। आज युवाओं के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसे कौशल भी आवश्यक हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम और सफल बना सके।
0: और वैसे ही होता है ना कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ माता पिता जो बच्चे 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में आ गए कि इस तरह के उन्हें कोचिंग भी के लिए भी भेजते हैं ताकि जो बचपन से ही ये सारी क्षमताएं वो डेवलप कर लेते हैं, अगर विकसित कर लेते हैं तो आगे चल के उन्हें नौकरी में बहुत फायदा होता है। और इसी तरह की बात हमारे साथ

0: थी ने भी लिखा है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, अच्छे कार्य उद्यम के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से प्रशिक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और प्रतिवर्ष इस दिन को मनाने की घोषणा की गई।
1: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज के समय में केवल शैक्षिक डिग्री ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं। कंप्यूटर, संचार, तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता और डिजिटल कौशल युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। भारत में स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे पहले इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विश्व कौशल दिवस का संदेश है, कौशल ही आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य की पहचान है। तो अपनी स्किल्स को
0: डेवलप
1: करना चाहिए। और एक साथी ने और भी लिखा है कि कुकिंग स्किल्स से तकनीकी का उपयोग करके भी आप लाभ उठा सकते हैं,
0: बहुत लाभ उठा रहे हैं। कितनी सारी गृहणियां जो है वो अपनी कुकिंग स्किल, पहले जो पुराना जमाना हुआ करता था ना कि हम सिर्फ घर में ही खाना बनाते थे, पर आज जो अलग अलग प्रांत के लोग जो है वो दूसरे दूसरे प्रांत की डिशेस खाना पसंद कर रहे हैं और जिससे जो गृहणियां हैं जिनमें कुकिंग की स्किल है उन्हें भी रोजगार मिल रहा है।
1: बिल्कुल। और जो हमारी जो लड़कियां भी हैं वो भी अच्छी अच्छी क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन अच्छी उन्हें है, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी अच्छी डिशेस बना के कुकिंग स्किल्स को बढ़ावा देकर के कुछ ना कुछ अपना आर्थिक रोजगार, अपने लिए आर्थिक धन
0: कमा रही हैं।
1: तो कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी गुण है, जो भी शौक है, आप उसको आगे बढ़ाइए और अपनी आर्थिक मदद आप परिवार को भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है।
0: यानी बस अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि हमारा ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है जिसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। और हम अब आगे बढ़ेंगे गीत के साथ।
1: जी,

0: तो सुनाली, बहुत प्यारा सा ये गीत था। तो जैसे इन्होंने कहा कि तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, तो इसी तरह हम सखियों में, सखी सहेली में भी हम दोनों सखियों का भी ऐसे ही रहता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं।
1: और जब हम साड़ी पहनते हैं फिर
0: उस
1: वक्त भी
0: उस समय भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं
1: और हमें तालमेल भी बहुत बिठाना पड़ता है।
0: बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं अरनी सिल्क साड़ी की, जिसे अरनी या अरनी भी कहा जाता है। अरनी सिल्क साड़ी भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक रेशमी साड़ियों में से एक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के अरनी नगर में किया जाता है। ये साड़ी अपनी बेहतरीन बुनाई, शुद्ध रेशम, आकर्षक रंगों, टिकाऊ गुणवत्ता और शानदार जरी के काम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली ये साड़ी आज देश विदेश के फैशन प्रेमियों की भी पसंद बन चुकी है।
1: और अरनी में रेशमी साड़ियों की बुनाई का इतिहास लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद के शासकों के समय इस क्षेत्र में रेशम उद्योग को विशेष संरक्षण मिला था और समय के साथ यहाँ के बुनकरों ने अपनी पारंपरिक कला को नई तकनीकों के साथ जोड़ा, जिससे अरनी सिल्क साड़ियों की अलग पहचान बनी है। आज भी अरनी में अनेक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शिल्प से जुड़े हुए हैं और ये कला केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है।
0: बिल्कुल। और अरनी सिल्क साड़ी का निर्माण कई चरणों में पूरा होता है, जैसे रेशम का चयन, उच्च गुणवत्ता वाले मलबेरी शहतूत रेशम का उपयोग किया जाता है, धागों की रंगाई, रेशम के धागों को विभिन्न आकर्षक और टिकाऊ रंगों में रंगा जाता है, ताना बाना तैयार करना, करघे पर धागों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है और जरी का उपयोग असली या उच्च गुणवत्ता वाली जरी के बॉर्डर और पल्लू बुने जाते हैं
1: और साथ ही हाथ करघे पर बुनाई की जाती है। अनुभवी बुनकर कई दिनों तक मेहनत करके एक साड़ी तैयार करते हैं और तैयार साड़ी की मजबूती, रंग और डिजाइन की जांच की जाती है और एक उत्कृष्ट अरनी साड़ी बनने में मंजरी 7 से 20 दिन तक और जबकि जटिल डिजाइन वाली साड़ियों में इससे भी अधिक समय लग सकता है। और इस साड़ियों में चौड़े और आकर्षक जरी बॉर्डर होते हैं जिनमें मंदिर, मोर, आम, कमल, बेल बूटे और ज्यामिति डिजाइन होती है और ये साड़ी वजन में बहुत हल्की होती है और जिसके कारण लंबे समय तक पहनने में आरामदायक होती है, साथ ही मजबूत बुनाई के कारण वर्षों तक सुरक्षित रहती है।
0: और तमिलनाडु में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और पारिवारिक आयोजनों में अरनी सिल्क साड़ी विशेष रूप से पहनी जाती है। ये शुभता, समृद्धि और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। दक्षिण भारतीय दुल्हनों के विवाह संग्रह में इसका विशेष स्थान होता है सोनाली। और अरनी के हजारों बुनकर इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं। वे आधुनिक डिजाइनों को अपनाते हुए भी अपनी प्राचीन बुनाई शैली को संरक्षित किए हुए हैं। उनके धैर्य, मेहनत और कलात्मक कौशल के कारण ही अरनी सिल्क साड़ी विश्व भर में सम्मान प्राप्त कर रही है
1: और साथ ही स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में इन साड़ियों का निर्यात होता है और तमिलनाडु के हस्तकरघा उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये साड़ियां सशक्त बनाती है। महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरनी साड़ियों को केवल ड्राई क्लीन करवाना चाहिए और सूती कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और सीधे धूप में लंबे समय तक ना रखें। अरनी साड़ियों को धोना बिल्कुल नहीं है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानकारी दी सुनाली तुमने। और समय समय पर साड़ी को मोड़ बदलते रहने, जो तह होती है उसको बदलते रहना चाहिए ताकि रेशम और जरी सुरक्षित रहे। अरनी सिल्क साड़ी केवल एक परिधान नहीं बल्कि भारतीय हस्तकरघा परंपरा, उत्कृष्ट शिल्प कला और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत प्रतीक है। इसकी बारीक बुनाई, शानदार रंग संयोजन और आकर्षक जरी का काम इसे भारतीय रेशमी साड़ियों में विशिष्ट स्थान दिलाता है
1: और ये साड़ी हमें उन कुशल बुनकरों की अथक मेहनत और सदियों पुरानी कला की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी विरासत को आज भी जीवित रखा है। इसलिए अरनी सिल्क साड़ी भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है
0: और हम सभी सखियां जो है वो अपने अपने वार्डरोब में चेक कर ले कि ये साड़ी है कि नहीं है
1: और नहीं है तो खरीद ले।
0: और फिलहाल ये सुने, गीत
1: सुनते हैं।

0: तो सोनाली देखो कितनी अच्छी सी बातें इस गाने में भी थी है ना,
1: कि जब हमारी कोई सहेली साड़ी पहन के जाती है तो अब अगर हम बोले कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो वो कितनी खुश हो जाती है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो आज भी जब आई थी तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे ना। साड़ी तो नहीं लेकिन हाँ कुर्तों पे हम लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। ऐसी बातें हो जाती है जब सखियां मिलती है।
1: यानी ये जो छोटी से जो तारीफ, जो छोटा सा शब्द है ना, ये हम सभी का मनोबल कई गुना बढ़ा देता है। तो बीच बीच में से तारीफ करते रहना चाहिए।
0: तारीफ करने के लिए भी देखो बड़ी हिम्मत क्या चाहिए रहता है, या फिर किस तरह से
1: हमारी हिम्मत बढ़ जाती है।
0: हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है और हम अभी हम लोग बात भी करेंगे हिम्मत के विषय में कि हिम्मत कैसे अपने अंदर रखनी चाहिए कि हर मुसीबत का सामना भी हम अच्छे से कर सके। तो हमारे बहुत सारे विचार आ ही चुके हैं। तो अब अंतराल का समय हो चुका है तो लेते हैं अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली
1: सहेली, और हम लोग बात करने वाले हैं शब्द हमारा विचार आपका। इसमें हम लोग हिम्मत के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोनाली, देखा जाए जब भी हम हिम्मत की बात करते हैं
0: जी,
1: तो केवल कठिन समय में आगे बढ़ने का नाम हिम्मत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी है। और हर जगह हिम्मत दिखाना समझदारी नहीं होती, जहाँ विवेक और धैर्य की आवश्यकता हो वहाँ केवल साहस नहीं बल्कि संयम भी जरूरी होता है। हिम्मत कहाँ कहाँ रखनी चाहिए? सच्चाई का साथ देने में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाने में, अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी हमें हिम्मत उठानी, हिम्मत दिखानी चाहिए, और अपने सपनों को पूरा करने में भी हिम्मत दिखानी चाहिए। असफलताओं से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, है ना?
0: ये तो बहुत सही बात आपने कही। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो दीपक है जो अंधेरों में भी जलता है, हर मुश्किल के सामने सीना तान कर चलता है, राहों में चाहे कितने भी तूफान आ जाए हिम्मत वाले कदम पीछे नहीं हट पाए, गिरकर उठना फिर आगे बढ़ जाना, सपनों को सच करने का यही अफसाना है, जो डर को अपनी मंजिल के बीच न आने दे वही इंसान सफलता का आसमान छू ले। हिम्मत से ही जीवन में नई राहें बनती है, इसी से जीत की खुशियां और उम्मीदें बनती हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है उसके लिए असंभव भी एक दिन संभव बन जाता है। हिम्मत वो आवाज है जो हर हार के बाद भी कहती है एक बार और कोशिश करो, ये तूफानों से लड़ना नहीं बल्कि उनके बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सिखाती। बहुत सुंदर सी बात लेकर हमारे साथियों ने भेजी है।
0: एक साथी कहते हैं कि हिम्मत का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक शक्ति है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से हार मानने से इनकार कर देता है तो वही उसकी असली हिम्मत कहलाती है। ये डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और संघर्ष हमें नया अनुभव देते हैं। हिम्मत रखने वाले लोग इन अनुभवों से अपने भविष्य की नई कहानी लिखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार आपके भीतर हिम्मत की एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत शब्द का अर्थ साहस, बहादुरी और हौसला होता है। हम बोलचाल की भाषा में इसका बहुत आयत प्रयोग करते हैं, हम तो हिम्मत हार गए, या इस फैसले से हमारी हिम्मत बढ़ गई। ये व्यक्ति की वो मानसिक शक्ति है जो उसे किसी कठिन परिस्थिति, डर या

0: अपार लगा सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो आंतरिक शक्ति है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। ये डर को खत्म नहीं करती बल्कि डर की मौजूदगी में इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसी से इंसान को सफलता मिलती है। हिम्मत वो सीढ़ी है इनको लिखना है, जो हर हार को भी जीत में बदल देती है। बहुत सुंदर सी बात है कि हिम्मत अगर होगी, अगर उसकी सीढ़ी पर हम चढ़ गए तो हमारी हार जो होती है ना वो भी जीत में बदल जाती है। और हिम्मत तो हमें देखो दिखानी पड़ती है। अभी कोई नया काम हम सीखते हैं, नई चीज सीखना चाहते हैं, जैसे वाहन चलाना, स्कूटर चलाना या कार चलाना है, तो हमें हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है, तभी हम सीख सकते हैं।
0: बच्चों को भी हमें हिम्मत देना पड़ता है। जब नए नए बच्चे चलना सीखते हैं तब भी डरते हैं, पर माँ जब उसे थाम लेती है कि डरो नहीं, हम है साथ में, तो वही हिम्मत उसकी ताकत बन जाती है।
1: बिल्कुल। इसी तरह बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल जाने वाले होते, तो वो किताबें देख के डरते हैं, विषय देख के डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, तो उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि देखो अभी हम समझाते हैं, तुम समझ जाओगे, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, दिमाग पर जोर मत दो, आराम से सुनो। ऐसी बातें करते तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है, तो वो हर चीज कर लेते हैं।
0: परीक्षा के समय में भी हिम्मत जुटाते हैं ना हम, हिम्मत बढ़ाते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों की, देखो घबराओ नहीं, परीक्षा अच्छे से देना। अगर किसी ने पीठ पर हाथ थपथपा दी कि देखिए तुम अच्छा कर रहे हो, परिणाम अच्छे ही होंगे, और अगर परिणाम इधर उधर हो भी गए तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस तरह से अगर कोई हमारे इर्द गिर्द हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है।
1: बिल्कुल सुनाली। और इसी के साथ साथ हमारे एक साथी और लिखते हैं, हिम्मत साहस हौसला इसके कई रूप है। बड़ी से बड़ी स्थिति को डट कर सामना करना हिम्मत का काम है। किसी भी गलत बात के लिए आवाज उठाना बहुत हिम्मत का काम है। अपने मन की ना सुनकर सही राह पर चलना भी हिम्मत का काम है। कोई बात किसी की ना पसंद आए, सही ना लगे, उसको मना करना, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। हिम्मत के रूप तो कई हैं। बचपन में तो मम्मी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी। अगर गलती करते थे तो डांट पड़ जाती थी, तो चुप रहकर सुन ही लेते थे। हिम्मत नहीं हो तो सर नहीं होती थी सर उठाने की।
0: यानी पुराने जमाने की बात ही कुछ और हुआ करती थी।
1: देखिए मम्मी ही नहीं भाई, पापा लोग से, पिताजी लोग से भी
0: बड़े उनकी आंखों से ही डरते थे।
1: तो ये बात थी कि उस समय हम लोग अगर वो कुछ कहते थे तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम उन्हें जवाब दें। आजकल पलट के जवाब सुनने को मिल जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो ये तो एक ऐसी आदतों की बात होती है, लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है, हौसला है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे फौजी भाइयों और सिपाहियों, सैनिकों में बहुत हौसला होता है, हिम्मत होती है कि सरहद पर खड़े होकर वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और देश के प्रति अपनी हिम्मत और जज्बे को दिखाते हैं। तो उनको हमें बहुत बहुत सलाम नमस्कार करना चाहिए
0: और गीत सुनना चाहिए।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई देखो सोनाली, अब हमारी बात होने वाली है पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र। इस पर हमारे साथी लिखते हैं कि इसका जवाब एक लाइन में नहीं है। पड़ोसी हो सकते हैं सच्चे मित्र, पर होते ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं। रात 2 बजे तबियत बिगड़े उस समय दोस्त और रिश्तेदार फोन पर होंगे, पर पड़ोसी दीवार के उस पार हर दिन की छोटी छोटी जरूरतें आपसी रिश्ते को गहरा करती हैं। लेकिन यही पड़ोसी मित्र कब नहीं बन पाते, जब सिर्फ दीवारें साझा हों पर दिल नहीं। ईर्ष्या, राजनीति, शोर शराबा या दखलंदाजी से पड़ोस का रिश्ता खराब भी हो सकता है, तब वो सिर्फ फ्लैट नंबर बनकर रह जाते हैं। पड़ोसी अपने आप में मित्र नहीं होते, उन्हें मित्र बनाया जाता है। एक नमस्ते, एक कप चाय, त्योहार पर एक प्लेट मिठाई, बस इतनी पहल से दीवारों के बीच का रिश्ता भी दिल का रिश्ता बन जाता है। वाकई में जब कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे के ही काम आते हैं हमारे पड़ोसी, जो भी होते हैं, सब किसी के भी पड़ोसी हो, एक दूसरे के काम ही आते हैं, तो उनके साथ अपना संबंध बना के रखिए, क्योंकि रिश्तेदार तो दूर होते हैं, अचानक आपको दिक्कत आएगी तो वही आपके काम आएंगे, और आप उनको दिक्कत आती तो आप उनके लिए मदद के लिए खड़े हैं।
3: हमारे एक साथी लिखते हैं मंजरी कि ये सच है कि पड़ोसी हमारे लिए रिश्तेदार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपदा के समय रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे साथ तो पड़ोसी के संबंध को प्रगाढ़ बनाने में उनके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ी भूमिका निभाई।

0: है। 3-4 महीने से लेकर अब 1.5 साल का होने तक वो बच्चा हमारे साथ ऐसा घुल मिल गया है कि अब अपने घर से ज्यादा हमारे साथ रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, देर रात कभी भी दादी बाबा कहते हुए दरवाजे पर आ जाता है और हम भी उसके भोलेपन के व्यवहार से ऐसे बन चुके हैं कि सब काम छोड़कर उसे बुला लेते हैं और फिर हमारे घर में उसकी छोटी छोटी शरारतों से एकदम से रौनक आ जाती है। उस बच्चे ने अपने निश्चल और नटखट प्रेम से हम दोनों परिवारों को एक साथ बांध दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: और एक साथी और लिखते हैं कि पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र ही नहीं बल्कि सच्चे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी हमारी मदद के लिए पहुंचते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहां से लौटने के बाद बहुत परहेज वाला खाना खाने को कहा गया। मेरे घर के सामने वाली आंटी ने रोज कुछ ना कुछ बनाकर मेरे लिए भेजती थी ताकि मेरी मम्मी को ज्यादा परेशानी ना हो। मना करने पर बोलती थी कि जब मुझे जरूरत होती है तब तुम भी तो जी जान से सेवा करती। वाकई में एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार रहेगा तो आपका घर परिवार और आपके अगल बगल से लेकर पूरा मोहल्ला भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि सबके पड़ोसी ऐसे हो जाएं तो।
0: एक साथी ने लिखा है कि पहले सगो पड़ोसी, सगे संबंधी तो दूर दूर रहते हैं, इस बात पर यह कहावत पड़ी होगी कि सगा पड़ोसी, इसलिए जो अच्छे संबंध हो तो वो ही पहले सुख दुख में भागीदार बनता है, इसलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि एकल या विभक्त कुटुंब पद्धति में अब पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र तथा रिश्तेदार बन रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी वो हमारी प्राइवेसी को जरूर डिस्टर्ब कर देते हैं, परंतु सुख दुख और आपातकालीन संकट में वो ही तो सबसे पहले हमारे काम आते हैं, सहारा बन जाते हैं। बदलती समाज व्यवस्था में पड़ोसी जीवन का अहम हिस्सा है, त्योहारों की रौनक और सुख दुख के सच्चे साथी बन गए हैं। थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में होते हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। दरवाजे से दरवाजा जुड़ा है, जुड़ा रहे दिलों का तार, खुशी गम और हर मुश्किल में काम आते हैं पड़ोसी मित्र बार बार। क्या बात है।
0: एक साथी लिखते, पड़ोसी हमारे सबसे निकटतम सहयोगी और सच्चे मित्र होते हैं। आपातकाल में दूर बैठे रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही उपलब्ध होते हैं। एक अच्छा पड़ोसी सुख दुख साझा कर जीवन को सुरक्षित बनाता है। और पड़ोसियों के या पड़ोस धर्म के बारे में हम अधिक पढ़ सकते हैं। यदि आप पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या आप जानना चाहेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल और सद्भाव कैसे बढ़ाएं? त्योहारों और समारोहों में सहयोग के तरीके, किसी भी अनबन को सुलझाने के उपाय हम जान सकते हैं। भैया एक उसमें कटोरी में डाल के कुछ मिठाई दे दी। हाँ। तो पड़ोसी भी ये जो संबंध जो है ना प्रगाढ़ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये छोटा सा बर्तन।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक साथी लिखते हैं, सोनाली, पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र हैं। अब ये बहुत अचंभित और कहानी सुनने जैसी बात लगती है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी आज भी है, पर आज की जो जेनजी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, प्राइवेट कॉलोनी में अब ये दूरियां बढ़ गई है। फ्लैट और सोसाइटी में ये दिखाई देती। मैंने कोरोना काल में प्राइवेट कॉलोनियों में को भी देखा और सोसाइटी और फ्लैट के सिस्टम में भी देखा है। फ्लैट वाले बहुत अच्छे पड़ोसी साबित हुए प्राइवेट कॉलोनियों के हिसाब से। हमारे जमाने की वो पड़ोसी नहीं कि किसके घर की दाल में आज कौन से मसाले की छौक पड़ी है, वो भी पता चल जाता था और कहने पर बड़ी सौंधी सुगंध आ रही है तो कटोरी दाल भी आ जाती थी। या अगर कोई 2 दिन नहीं दिखाई दिया तो 3रे दिन आपके घर आकर उनसे पूछ लिया गया, आप 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है। ये भावनात्मक लगाव खत्म हो गया है जो सचमुच चिंतनीय है। बहुत इन्होंने पते की बात,
0: बहुत सही बात की, और खासकर शहरों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। छोटे शहरों में और गांवों में अभी भी लोग पड़ोसियों के घर हक से जाकर बैठते हैं, हक से खाना खाते हैं, वहीं पर रह भी जाते हैं, पर यहाँ पे शहरों में बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ चुकी है। पर इस गंभीर परिस्थिति को हम हल्का करेंगे गाना सुनकर। जी।

0: तो भाई देखो सुनाली, तुम आई तो मैं सोच रही थी आज तो तुम पक्का मुझे मकई के कुछ कुछ व्यंजन खिलाओगी, लेकिन तुम लाई नहीं। चलो हम रेसिपी पढ़ के संतुष्टि ले लेते हैं।
1: वे बारिश तो गिरने दो, उसके बाद में हम कुछ, बारिश गिरने के बाद ही मकई खाने का आनंद बढ़ता
0: है ना? जी। चलो रेसिपी पढ़ के अपनी भूख को शांत कर लेते। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है मकई की चाट, इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। एक एक डेढ़ कप या दो कप स्वीट कॉर्न या देसी भुट्टे के दाने। सब्जियों में आपको लेना है एक छोटा प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च। और मसाले में आपको लेना है एक छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार, काला नमक या आप सादा नमक भी ले सकते हैं। और इसमें एक बड़ा चम्मच मक्खन लेना है आपको, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको बनाने की विधि है कि आप भुट्टो को उबाल लें, एक पैन या बर्तन में पानी डाल करके कॉर्न के दाने आप 5 से 10 मिनट उबालिए और इसको छान लीजिए। तड़का लगाने का के लिए आपको एक पैन में मक्खन गर्म करना है, उसमें उबले हुए कॉर्न 1-2 मिनट के लिए भूने। आप बिना भुने भी इसकी चाट बना सकती हैं। और इसमें मसाला मिलाए जो आपने फ्राई किया है, उसको मसाला मिलाए। एक बड़े कटोरे में गर्म सामान कॉर्न ले और इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, प्याज टमाटर हरी मिर्च और मसाले, चाट मसाला जीरा पाउडर लाल मिर्च नमक आदि डालें, मिला लें। नींबू का रस डाल दें, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से आप मिलाएं और ये आपकी चटपटी मसालेदार कॉर्न चाट तैयार होगी।
1: यानी जो लोग डाइटिंग करते हैं वो भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल खा सकते हैं, अनार के दाने भी आप डाल सकते हैं और पड़ोसियों को चाहे दे आए आप, है ना।
1: और मकई का हलवा बनाने की विधि लिखकर भेजी है कि ताजे नरम कच्चे भुट्टे के दाने को मिक्सी में से पीस ले, फिर एक पैन में घी गरम करके भुना हुआ मकई का पेस्ट डाले। अब तब तक भुने जब तक वो पैन ना छोड़ने लगे, अर्थात पैन में चिपके नहीं। फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाए। तैयार है पौष्टिक मकई का हलवा। ऊपर से मेवे डालकर हलवा सर्व करें। और इसमें अगर आपने ज्यादा दूध डाल दिया और थोड़े से दाने ऐसे उबले हुए बिना पीसे हुए दाने डाल दे तो मकई की खीर भी बन सकती है।
0: क्या बात है। और एक साथी लिखती है कि मेरे घर मकई की सब्जी बनती है, वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले बिना छिलके वाले साबुत मकईयों को हल्दी नमक पानी के साथ कुकर में उबाला जाता है। ठंडा होने पर इसके 1 से 3-4 पार्ट में इसको काटा जाता है। उबली हुई मकईया के टुकड़े प्याज आलू टमाटर की सब्जी में मिलाकर 4 मिनट तक पकाया जाता है ताकि सब्जी का मसाला मक्की के टुकड़ों में आ जाए। ग्रेवी गाढ़ी या पतली आप चाहो तो इसे रख सकते हो। और मकई के दानों की आप बेसन में मिला करके पकौड़े बना लीजिए, है ना।
1: और एक है ना, सखी ने लिखा है कि भुट्टे के दाने का छिलका या चीला, यानी दाने को बारीक पीस ले। अब इसमें कटी हरी मिर्च, नमक, 1-2 चम्मच बेसन या चावल का आटा या सूजी बारीक कटा प्याज मिला ले और तवा पर इसका चीला बनाए। ये बहुत पतले नहीं बनते, थोड़े मोटे रहते हैं। अगर इसमें आप प्याज नहीं मिलाना चाहते तो बिना प्याज के बहुत अच्छी लगती है। चटनी या दही के साथ खाते, पर मैं तो कहूंगी किसी की जरूरत नहीं, खुद ही बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगते हैं। और मकई ना दो तरह की आती है, एक पीले रंग की मकई होती है और एक सफेद। तो पीले रंग के जो दाने होते हैं ना मीठे होते हैं और सफेद वाले जो होते हैं इतने मीठे नहीं होते, यानी फीके होते हैं। तो जब नमकीन डिश बनाना होता तब सफेद वाले मकई का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा।
0: तुमने बहुत अच्छी सी टिप्स दी है, तो बड़ा स्वाद आ गया इन सब रे व्यंजनों को सुन करके, देख करके और पढ़ करके। तो अब चलो एक गीत सुन लिया जाए।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली, मकई के सूप के बारे में भी बता देते कि मकई के दाने इसकी लेना है आपको, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर लेना है और सब्जियों को हल्का भूने पानी में डालकर उबालें, थोड़ा कॉर्न पीस कर मिलाएं ताकि सूप गाढ़ा हो जाए और गर्मा गर्म आप इसको परोसें।
1: तो यानी अभी जब सर्दियों के दिन आते हैं या फिर जब झमाझम बारिश गिरती है, जब वातावरण एकदम से ठंडा हो जाता है, उस वक्त ये गर्म गर्म सूप जो है ना, ये बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत भाता है। भले ही थोड़ी सर्दी हो जाए ना, उस वक्त भी ये सूप दे दे तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किचन में जाते हैं, कुछ नई चीज हमें बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अपना कौशल भी दिखाना पड़ता है और साथ में हिम्मत भी बहुत दिखानी पड़ती है कि जो हम बना रहे हैं
1: जी
0: वो सही बनेगा और लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और जब अच्छी चीज बनती है तो लगता है थोड़ी सी पड़ोसी को दे दे। तो यानी कहना चाहिए कि हमें आज के सारे विषयों को मिलाकर एक अच्छी नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों को बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ खिलाते
1: और श्रोताओं को कहते हैं हम धन्यवाद और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंशी वर्मा का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्र
1: मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। आज देश में स्किल इंडिया मिशन की 11वीं वर्षगांठ और वैश्विक स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक और बाजार की मांग के अनुरूप तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। रांची के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कांके विधानसभा क्षेत्र में SIR अभियान के तहत एक जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अपने मतदाता विवरणों का समय पर सत्यापन और आवश्यक संशोधन कराने की अपील की। पलामू समाहरणालय में आज आयोजित एक समारोह में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने IDBI बैंक के CSR फंड से 10 दिव्यांगजनों के बीच 3 पहिया पेट्रोल चालित ट्राई स्कूटी का वितरण किया। इस अवसर पर उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और सदर SDO संजय कुमार पांडे भी उपस्थित रहे। रांची में 17 जुलाई को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए NPS संचय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और राज्य स्तरीय बैंकर समिति झारखंड की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि संबंध क्षेत्रों और ग्रामीण उद्यमियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मलिक के निधन से धनबाद में शोक है। कल रात उनका पार्थिव शरीर रांची से धनबाद आवास लाए जाने के बाद से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। आज शमशेर नगर कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। लोहरदगा पुलिस ने कुड़ू थाना क्षेत्र के चांपी पिकेट के पास वाहन जांच अभियान के दौरान 25 ग्राम स्टोन मार्क ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। SDPO श्रद्धा करकेट्टा ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से मिले सुराग के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: तो श्रीमती जी हैं, उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया?
4: अच्छा।
3: बोले FM रेडियो नहीं बज रहा है।
4: अच्छा।
3: और मैं विविध भारती सुने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं।
4: बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जल्लाद क्या है, कहां से विचार आया ये नाटक लिखने का, इसके लिए पुरस्कार भी मिला आपको?
3: जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य अकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपये का है, वो घोषित हुआ है मेरी नाट्यकृति जलनाद पर। और जलनाद कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताऊं। विश्व जल वर्ष था UNO का, तो नार्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं।
4: जी।
3: तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती हैं ममता जी कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से वो भी जल प्रलय से है।
4: जी हाँ।
3: आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से ही मंत्र उच्चारित कर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे। और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो
4: जल ही जीवन है,
3: जल ही जीवन है, पानी का लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें आज भी कितने सारी

0: कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जबकि हम विज्ञान से इस कदर प्रगति कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि तेल खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ, वहां भी जो समुद्र के पानी को शुद्ध करके पेयजल बनाया जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या थी कि अगर उन पानी के संयंत्रों पर बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तो पानी का महत्व निर्विवाद है।
1: तो इसमें ये जो नाटक है ये जलनाद, इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहाँ से आपके पास आइडिया आया,
0: इसमें
1: क्या रिसर्च किया?
0: जी हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए बात की गई है, तो मैं उससे एक जो उसका हिंदी मैंने भाव अनुवाद किया है, एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूँ। हे जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए, तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसका हिंदी अनुवाद है अंत में मैंने किया, कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो ये हमारे लिए जीवन सूत्र भी है।
1: जी जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं।
0: हाँ।
1: और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं, तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने?
0: ममता जी, व्यंग के ट्रिपॉइड मध्य प्रदेश में है
1: जी।
0: शरद जोशी जी, बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे।
1: उनका प्रतिदिन एक कॉलम आता था।
0: हाँ। और हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था सुनो भाई साधो
1: जी।
0: तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार साहित्यिक रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो ये सब पढ़ा मैंने। रविन्द्रनाथ त्यागी जी वो भी मध्य प्रदेश के थे
1: जी जी जी।
0: और जो एक कहा जाए कि व्यंग के ट्रिपॉइड, ये तीन स्तंभ रहे हैं और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा, और अवचेतन में कहीं ना कहीं एक व्यंग के बीज अंकुरित होते रहे
1: जी।
0: व्यंग देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और बड़ा लोकप्रिय है, लोग उसे पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। और मेरी व्यंग की 11 किताबें हैं जिनमें मेरे अनेक व्यंग संग्रहित, समय समय पर जो लिखता गया वो किताबों के रूप में आते चले गए एक के बाद एक।
1: कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करना चाहेंगे आप?
0: हाँ जरूर, मैंने कुछ संपादन किया वैश्विक रूप से व्यंग संग्रहों का, मैंने वैश्विक लेखकों को एकत्रित किया। मेरा परिदृश्य, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैश्विक हो गया है क्योंकि बच्चे मेरे सब विदेश में हैं तीनों, तो उस वजह से जैसे मैंने एक मिली भगत यानी सामूहिक व्यंग संग्रह बहुत से निकले हैं, भारत से भी कई निकले हैं और बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन पहला वैश्विक संग्रह अगर मैं कहूं तो मुझे बताने में गर्व होता है कि मिली भगत जैसा नाम से ही है, उस नाम से मैंने ये निकाला था। तो इसमें पूरे विश्व के कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से जो व्यंगकार उस समय व्यंग लिख रहे थे उनके व्यंग, दुबई से, वो लेकर के और उनका एक सामूहिक संग्रह निकाला था, तो उसका नाम मिली भगत है और उसका संपादन मैंने किया था। जो आपने बात की कि मेरे व्यंग की किताबों की बात, तो राम भरोसे ये एक शीर्षक है, यानी जो भारतीय आम आदमी है वो किसी समय ऐसा लगता था कि जैसे वो राम भरोसे है, अंत्योदय जो गांधी के अंत्योदय का आदमी है उसको जब हमने राम भरोसे एक प्रतीकात्मक नाम दिया। व्यंग में एक लक्षण शक्ति होती है, एक
1: मुश्किल भी होता है व्यंग्य लिखना, क्योंकि जो चुटीले व्यंग्य होते हैं, जब हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उस व्यंग्य को लिख कर गुदगुदा सकें या फिर करारा चोट कर सकें, दोनों। तो आपके लिए किस तरह की चुनौती रही
0: व्यंग में? मैंने बहुत सारे प्रयोग किए,

0: उलट बांसी में हम किसी चीज की अतिशयोक्ति से इस तरह से बताते हैं कि उसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं कि सामने वाला उसको संप्रेषित हो जाता है कि ये इसके विपरीत मैंने उसके हंसी उड़ा रहा है
1: जी जी,
0: है ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे अवलंबन लेकर के, जैसे
1: किसी व्यक्ति विशेष को
0: कोई हमने एक पात्र चयन किया। हाँ। जैसे एक मेरा व्यंग है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन, तो अर्जुन को पात्र बना करके, जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो उस तरह का हम किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें, दोनों चेहरे तो एक से हैं।
1: जी जी, जी
0: कई बार ये स्थितियां होती हैं।
1: तो हम किंग कर्तव्य विमोड नहीं हो सकते हैं। हम इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इस समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए ममता जी, आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए, क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता है।
1: जी, अमर प्रेम फिल्म का गाना,
0: अमर प्रेम फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना
1: सुनते हैं, यही गीत।

0: विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की,
1: जी हाँ
0: एमटेक किया,
1: जी हाँ
0: बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे,
1: जी हाँ
0: तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहां पहुंचे और कोई खास याद वहां से जुड़ी हुई है जो शेयर
1: ममता जी,
0: करें।
1: मैं इसके लिए कहूंगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: मैं इतना लकी नहीं था,
0: विरोधाभास
1: विरोधाभास रहा मेरे
0: रहा
1: जीवन में,
0: है जी।
1: क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूं
0: हाँ
1: कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूं, मंडला में मेरे दादाजी जो थे उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे,
0: अच्छा, क्या
1: मेरे
0: बात है।
1: पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं
0: जी
1: जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय

0: और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चाट डाले
1: क्या बात है। उस
0: थे
1: समय
0: तो
1: पढ़ने का एक
0: जी हाँ,
1: खास शौक
0: और
1: हुआ करता
0: पढ़ने का
1: था, दौर
0: शौक
1: था
0: था,
1: पढ़ाई का।
0: बहुत दौर था क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे। रेडियो, अखबार, अखबार के साहित्यिक कॉलम वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे। पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई
1: जी
0: बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका का अंक
1: कि
0: आता
1: कौन पहले
0: था कि
1: पढ़ेगा।
0: कौन पहले पढ़ेगा। तो ये जमाना था। तो
1: मनोहर
0: मैंने
1: श्याम जोशी का
0: जी हाँ
1: साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान,
0: साप्ताहिक
1: तो इंतजार
0: हिंदुस्तान,
1: होता था कि कौन पहले
0: धर्मयोग,
1: पढ़ेगा। धर्मयोग,
0: धर्मयोग
1: जी।
0: और वो उससे भी पहले छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए।
1: जी
0: तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से। लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना
1: तो
0: जाता था।
1: इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप तो
0: गणित
1: साहित्यिक
0: जी हाँ
1: रुचियों में जा
0: रुचि
1: रहे
0: में
1: थे,
0: था, बिल्कुल सही है आपका कहना। लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल रहा
1: अव्वल थे।
0: जी हाँ। तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हान अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहाँ से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया। तो
1: क्या
0: मैंने
1: बात है,
0: रायपुर
1: बढ़िया।
0: से BE किया। फिर उसके बाद BE करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया
1: एमटेक से।
0: MSCT भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में। तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बन के रिटायर हुआ। और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम तब तक वो कंपनी बदल लेते
1: तब आपने एक
0: हैं
1: जगह नौकरी ज्वाइन की तो
0: लगातार
1: बस
0: की
1: वहीं पे स्थायी रूप से। लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में
0: जी
1: अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है, महानगरों को छोड़ दें, मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है,
0: जी
1: लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है। तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया हो, कोई ऐसी घटना
0: नहीं,
1: याद आती है?
0: आप सही कह रही हैं। लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग
1: खपत
0: ज्यादा थी,
1: ज्यादा थी।
0: खपत ज्यादा थी। अब हमारी मांग के अनुरूप काफी बिजली बन रही है और बहुत सारी उसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं। भारत में बिजली बनाने के, जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा मैं, कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहां पर पानी की जो स्थिति, जो ऊर्जा है उसको, पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन, मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि तांबे का कोई, जो हमने फेराडे लॉ पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो थर्मल बिजली कहलाती है। उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पन बिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी लागत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है। तो मैं मंडला में पदस्थ था तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना नर्मदा नदी के बांध के किनारे, जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस जमीन का, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से जमीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहाँ की आबादी कम होना चाहिए क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो। तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और जमीन यही दिया जाना था। तो ये वो प्रस्तावित है, अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
1: जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए
0: जरूर
1: कौन सा
0: जरूर।
1: गाना?
0: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
1: बहुत मशहूर फिल्म
0: मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत
1: है।
0: पे हम चर्चा करना चाहेंगे।
1: जी जी
0: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, नौशाद।

0: जी ने संगीतबद्ध किया था और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को आज।
1: तो ये
0: आज भी ये धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
1: क्या बात है, मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है।
0: क्या बात है, आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी, आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है।
1: तो अब यही गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: कि जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं,
1: जी हाँ
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे आपके पास शिकायतों की भरमार? आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है,
1: ममता जी,
0: तो ऐसी कोई
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छा
0: तो?
1: सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो
0: हाँ
1: मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है, यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से, उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पर वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती
0: जी
1: रहे,
0: जी जी
1: ये उनकी, उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहां पर हैं वहां हैं, लेकिन जहां मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था
0: क्या बात है।
1: कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियां मनाने का मौका मिलता है एमपीबी की तरफ से, क्यों, क्योंकि

0: बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई।
1: जी
0: तो हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली। लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
1: तो आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं?
0: हाँ श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती हैं, क्योंकि
1: अच्छा
0: मैं दीपावली में भी जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था
1: हाँ
0: कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे से हो जाए, प्रकाश रहे,
1: हाँ
0: कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें, तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था, तब हम घर की पूजा करते थे।
1: जी जी
0: तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है, जब यहां मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो यहां मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूं।
1: बिल्कुल
0: वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है,
1: जी
0: जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है, तब कहीं जा करके
1: बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है।
0: जी हाँ।
1: चलिए अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं,
1: जी
0: तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये
1: जी जी
0: 1959, ये
1: अनाड़ी
0: मेरे
1: फिल्म का गाना है।
0: अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959,
1: अच्छा,
0: 28 जुलाई
1: क्या बात है।
0: 59।
1: तो
0: जी
1: सुनते हैं ये गाना।
0: जी हाँ।

0: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और कोई रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए
1: जरूर।
0: लिखते समय।
1: व्यंग मेरी मूल विधा है
0: जी,
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागजों पर उतार देता हूं और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज्यादा सहज और सरल समझता हूं। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं
0: जी।
1: जो मैं कभी कभी कहता हूं कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और आप इसे समझ सकती हैं
0: जी, जी।
1: क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूं। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था
0: जी।
1: तो उसमें भी गिरिजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं
0: जी, जी।
1: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
0: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद
2: सूरज कुमार ढाकसे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
0: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
0: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
0: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
0: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
0: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
0: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थी। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
0: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
0: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
0: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे, ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को

0: मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
1: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
0: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे।
1: जी,
0: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूं विमलेश
1: जी,
0: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
1: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
1: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
5: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
6: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
6: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
6: अच्छा, तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई, चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
3: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है। इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं।

0: कहते हैं, इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
0: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
0: क्योंकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
0: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया नाना जी। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
0: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
2: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
0: हाँ।
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
1: ओ।
2: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
2: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
2: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
0: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
1: ओ।
2: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
0: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
1: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ।

0: उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माता जी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी मां के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखो तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर किसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठाया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय, कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है। मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे, जीवन में

0: सदे वैसे ही काम करना।
1: परंतु माँ, एक अपराध हो गया।
0: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
0: बेटा नरेंद्र, तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
0: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ।

0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
1: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
2: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
2: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
1: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
2: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
3: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
2: प्रणाम महात्मन।
4: जीते रहो पुत्र।
2: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हो। फिर वे नरेंद्र से बोले,
4: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
2: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
4: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम ही देख रहा हूं, तुमसे बात ही कर रहा हूं। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
2: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर

0: के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है। सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया।

0: विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। स्वामी जी ने देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता

0: बंधु
1: चेतना और
2: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज झारखंड और ओडिशा के लिए 3,907 करोड़ रुपए की दो रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत झारखंड में राजखरसावां डांगुआ पोसी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। दुमका में आज विश्व युवा कौशल दिवस पर चार झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष सुधीर कुमार मंडल और कर्नल अनिल यादव ने युवाओं से सरकारी कौशल योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का अपील की। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए देशभर में जारी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं। अभियान के झारखंड प्रभारी अभय आश्रय दास ने प्रेस वार्ता में बताया कि आगामी 27 जुलाई को देश के सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित मांग पत्र सौंपा जाएगा। राज्य के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन्नान मलिक को आज धनबाद के वासेपुर स्थित शमशेर नगर कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। ऊर्जा संरक्षण और जागरूकता के उद्देश्य से आज शाम 7:30 बजे से बोकारो में 3 मिनट का ब्लैकआउट रखा जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत पेट्रोल पंप और मेडिकल अस्पताल सहित आसपास के प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी गैर जरूरी बत्तियां बंद रखी जाएंगी। खूंटी पुलिस ने तजना नदी पुल के पास हुए दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर।

मेरा नाम अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गाना फिल्म था आपको पहले भी कहीं देखा है। और अब प्रोग्राम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजें हैं, फिल्म का नाम आंखें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम इवनिंग मेलोडी, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। उदित नारायण शान और जॉनी लीवर की आवाजों में प्रोग्राम का ये अगला गाना, टाइटल सॉन्ग है ये, फिल्म का नाम आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया।

दुनिया ये गोल है, अंदर से पोल है, रुपए का मोल है, बाकी सब झोल है। इनकम हो अंडा तो पत्नी मारे डंडा, जीवन की गाड़ी भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी है ठन्नी, खर्चा

नंदिनी अट्ठनी खर्चा रुपया। अब इस गीत के बाद सुनवा रहे हैं आपको सुनिधि चौहान की आवाज में प्रोग्राम का अगला गाना। फिल्म का नाम है आजा नचले।

ये था प्रोग्राम इवनिंग मेलोडी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:29 और 41 सेकेंड। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:31 लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के नसीम के देने से आदाब जोहार नमस्कार और साथ ही ये कार्यक्रम में तो इन सब के स्वागत है। किसान भाई बहन, हम इन हर रोज़ की तरह आज भी नया नया कार्यक्रम लेके आयल ही है। ओकर में ये कि किसान से लेवल बातचीत भी सुने बे, जरूरी संदेश भी होते, गीत संगीत के भी हम इन आनंद लबे और सरकार के दने से चलावल जा रहा योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के बारे में भी हम इन विस्तृत जानकारी एकर में देबे, जानकारी बातचीत करबे और आखिर में जो है हम इन सब बात करबे कि बरसात के दिन में किसान भाई बहन जब अपन खेत में काम करो थीन तो ये मौसम में जो घटना घटवा जैसे कि बिजली चमको है, बादल गरजो है, तो एकर में किसान भाई बहन कैसे बचते थीन एकर पर भी हम इन चर्चा करबे। तो सबसे पहले हम इन सुनो ये कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो शुरुआत भेल है वो सरकार के दने से 1 जुलाई 2015 से करल गेल है। एकर उद्देश्य है कि सिंचाई के पानी जो है हर खेत में आसानी से पहुँचे और एकर बेहतर उपयोग करके अधिक उत्पादन जो है वो लेवे के है। साथ ही साथ देखा कि ये योजना के मुख्य उद्देश्य में एक ये भी है कि हर खेत तक सिंचाई जो है सिंचाई की सुविधा जो है वो प्राप्त हो मिले, वर्षा के पानी के जो जमा करे के ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसन आधुनिक सिंचाई की तकनीक के बढ़ावा देवे के है ताकि किसान जो है जे टेक्निक आ रहे खेती बाड़ी के ओकरा उपयोग करके अपन खेती के भी मजबूत करते थीन और जे इनकम है जे आमदनी के जे जरिया है वो हो एकर से मजबूत कर सको थीन। साथ ही साथ कम पानी में अधिक फसल उगाना ये भी समझा कि देखा कि आधुनिक तकनीक के एक बड़ा जो है बड़ी बात है कि कम पानी में हमें कैसन जो है अधिक उपज कैसे लिए और किसान की आय और वार्ष और कृषि उत्पादन को बढ़ावा कैसे देवल जाए, ये देखा कि ये एकर मुख्य उद्देश्य में शामिल है। हर खेत के पानी जो है पानी खातिर सरकार के जो ये मंशा है कि नई नहर के जो है निर्माण करल जाए, बनावल जाए नया

है, यहो किसान भाई बहन के हमें बता दिए कि सिंचाई की सुविधा एकर से बढ़ो है और सूखा का अवसर जो है वो कम हुआ है। यानी देखा कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि सुखाड़ की स्थिति किसान भाई बहन के सामने आ जाए तो वो स्थिति से भी निपटे में ये योजना जो है मदद करो है। साथ ही साथ फसल की पैदावार एकर से बढ़ो है, पानी की बचत एकर से करल जा है, एकर से होवो है, और किसान की आय में जो है वो सुधार भी होवो है और बढ़ोतरी भी हुए। और देखा कि एकर से फसल के जो क्षति हुआ है, फसल जो नुकसान हुआ है, ओकर से भी बचल जा सको है ई योजना से। तो हमें अपन कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाई बहन के हर रोज़ ये सलाह दीजिए कि जय सरकार की तरफ से योजना किसान भाई बहन के खातिर आवो है, ओका जानकारी रखे के चाहिए और ओकर जो है फ़ायदा उठाकर अपन कृषि के मजबूत करे के चाहिए, और मिट्टी में जे पोषक तत्व है ओकरो जो है बनावे रखे के चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ और मजबूत करल जाए एकर पर भी हम इनके विशेष ध्यान देवे के चाहिए। तो चला किसान भाई बहन, अब हम इन्हें सुनबे कुछ जरूरी संदेश और फिर आनंद लेबे गीतनाद के।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाई बहन, अभी हमें सुनो लिया जरूरी संदेश और प्यारा सा गीत के हमें आनंद उठे लिया। अब हमें बात कर एक किसान से, लेवल इंटरव्यू ओकर से बातचीत कि मक्का और फूल गोभी की खेती जो है कैसे करल जाए है और ओकर से अधिक मुनाफा जो है कैसे करल लेवल जाए। ये जानकारी देवथिन रामचंद्र प्रसाद हथिन और हमें दिन से जो बात करल थी ने वो हथिन नसीम अहमद। तो सुनल जाई बातचीत।
1: आज हम बड़का चुंबा आए हुए हैं और हमारे सामने जो है रामचंद्र प्रसाद मौजूद हैं। एक वरिष्ठ किसान हैं और इस क्षेत्र में इनको जो है काफ़ी शोहरत हासिल है। खेती बाड़ी के क्षेत्र में दूर दूर से लोग इनसे सलाह लेने के लिए आते हैं खेती बाड़ी के मामले में। आज हम इनसे जानेंगे कि मक्का और फूल गोभी की खेती जो है वो कैसे करते हैं। काफ़ी बड़े क्षेत्र में इन्होंने जो है मक्का और गोभी की खेती जो है वो लगा रखी है। इससे पहले भी गोभी ये अपने खेत से जो है निकाल चुके हैं और फिर इन्होंने जो है गोभी की फसल लगाई है। साथ ही साथ मक्का की फसल भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो लहरा रही है। तो रामचंद्र जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है?
2: शिक्षा तो मैट्रिक फेल है।
1: मैट्रिक फेल है, उसके बाद आपने क्या किया?
2: क्या किया, जैसे मैट्रिक फेल कर गए तो थोड़ा सा होता है, एक बार मनोबल टूट जाने के बाद वही फिर खेती बाड़ी में लग गए।
1: यानी पढ़ाई से आप रूठ रूठ गए,
2: रूठ गए
1: फिर आप जो है खेती बाड़ी की तरफ आप आ गए।
2: जी।

0: किसी ने कहा खेती बाड़ी की तरफ आने
1: की? नहीं नहीं, बाप का बहुत जमीन है उसमें, मैं खेती बाड़ी।
0: पिताजी ने कहा कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ो, खेती तरफ।
1: जी जी,
0: चलिए बहुत अच्छी सोच है भाई, अपनी जमीन है, अपना सब कुछ है, तो खेती की तरफ आना आपका बिल्कुल सही फैसला सही था। हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि आप खेत की तैयारी कैसे करते हैं विभिन्न फसलों को लगाने के?
1: खेत का तैयारी वही है, जुताई करके। आजकल रोटर हर हो गया, उसके बाद बैल है, जैसा सुविधा हो खेत का जुताई करके, उसके बाद वही गोबर उसमें पाट दिया जाता है।
0: अच्छा, सिंचाई, ये आप जो खेती करते हैं कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है, वो हल बैल से खेती करना या ट्रैक्टर? और
1: नहीं तो हल बैल से तो हो गया कि अब सुविधा नहीं हो पाता है, और रोटर से हो गया कि खेत तुरंत तैयार हो जाता है, इधर बीड़ा में बीजा तैयार हो गया रोपने लायक, उसके बाद आराम से रोटर से जुता कर तुरंत तैयार हो गया। हल बैल से तो अब सुविधा नहीं हो पाता है।
0: हल बैल से काफी समय भी लगता है।
1: हाँ, समय थोड़ा मोड़ा अब नहीं है कि हल बैल से किया जाए सब।
0: तो आप मक्का और गोभी की खेती के, पहले हम मक्का की बात करते हैं, तो मक्का की तैयारी जो है कैसे करते हैं?
1: मक्का का खेती का बहुत आसान तरीका है कि अभी तो बरसात का समय में उसका बुआई भी कर सकते हैं, मतलब हल से पीछे पीछे बुआई, लेकिन वैसा तो अब करने से पानी का तो देख रहे हैं वैसा स्थिति कभी पड़े नहीं पड़े, इसके अच्छे हमें खेत तैयार करके उसमें झोरा घींच कर उसके बाद आराम से हाथ से रुपाई कर दीजिए उसका।
0: अच्छा,
1: तो उसमें ठीक रहता है वो।
0: एक दाना से दूसरे दाना की दूरी क्या होती है
1: मक्का में? तो जैसे आज का हाइब्रिड मक्का आ गया है, उसका तो दूरी थोड़ा सा लगाने में वही 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक में दूरी में लगाने में, बीज का दूरी में, कि मतलब एक पौधा में दो मतलब आता है उसमें बाल।
0: अच्छा,
1: दो मक्का आराम से, बड़ा बड़ा मक्का
0: एक पौधे में दो मक्का जो है वो आराम से आएगा। तो एक पौधा से जो है दूसरे पौधे की दूरी लगभग जो है 4-5 सेंटीमीटर?
1: नहीं उतना नहीं,
0: 2 से 3 सेंटीमीटर,
1: 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 तो कम से कम होना चाहिए।
0: और कतार से कतार की दूरी कितनी?
1: कतार का कतार मान लीजिए वही 1 फीट।
0: 1 फीट?
1: हाँ।
0: कितने दिनों के बाद जो है जर्मिनेशन आता है
1: मक्का? तो वही मतलब 3 से 4 दिन में जर्मिनेशन आ जाता है मक्का का, सिंचाई करने के बाद, रोपाई करने
0: के बाद। तो मक्का रोपने के कितने दिनों के बाद सिंचाई करते हैं?
1: वही मक्का रोप के तुरंत सिंचाई कर सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा, सिंचाई की क्या होते है? समय क्या होता है? सुबह होता है, शाम होता है, दोपहर होता है?
1: वैसे तो सिंचाई का समय तो शाम को अच्छा रहता है, कि सिंचाई करने से, शाम को सिंचाई करने से पूरा जमीन में नमी आ जाता है रात भर में,
0: पौधा सूखता है।
1: और जैसे सुबह करने से दिन भर धूप होने से शाम तक तो सूख जाता है, उसमें बीज का जैसे सही मतलब जो बीज दाना है वो बढ़िया से अगर अंकुरण होना है तो उसको फूलना चाहिए पानी में, तो रात शाम को सिंचाई करने से बढ़िया है।
0: अच्छा, कौन सा बीज आपने प्रयोग किया है?
1: मक्का का बीज तो हर कंपनी का है, लेकिन सबसे बढ़िया है वो पायनियर का आता है मक्का। अच्छा, सबसे बेस्ट है वो।
0: अच्छा, वो देसी मक्का आप क्यों नहीं लगाते हैं?
1: देसी मक्का अब लगाने से फायदा नहीं है, देसी मक्का में तो सब बाल भी छोटा आता है, दाना भी सही, और हाइब्रिड में हो गया कि बाल भी बड़ा आता है, दाना भी बड़ा बड़ा रहता है।
0: लेकिन खाने में तो देसी ठीक?
1: नहीं नहीं नहीं, मेहनत पर है, जैसा कीजिए।
0: नहीं, खाने में तो देसी ठीक लगता है?
1: देसी ठीक लगता है, लेकिन अब सबको भला है हाइब्रिड में।
0: इसका खरपतवार कैसे निकलते हैं?
1: खरपतवार नहीं, मक्का रुपाई करने के बाद उसको जर्मिनेशन हुआ, कुछ बड़ा हुआ, करीब करीब 10-12 दिन उसको खुदाई करके और फिर से मिट्टी चढ़ा के उसके बाद पानी पड़ा तो ठीक है, ऊपर प्रसाद का आना तो सिंचाई कीजिए।
0: कितनी बार मिट्टी चढ़ाते हैं?
1: मिट्टी एक बार।
0: मिट्टी एक बार?
1: एक बार।
0: कितने दिनों में जो है वो फूल आना, फल जो है शुरू हो जाता है?
1: मक्का तो वही अगर बढ़िया से सिंचाई हुआ तो हम तो वही बोल रहे हैं कि 45-50 दिन में तैयार होने की अवस्था में आ जाता है, लेकिन सिंचाई थोड़ा सा देर दूर वही 60 दिन लग जाता है।
0: अच्छा, गर्मी के दिनों में जो आप मक्का लगाते हैं उसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है?
1: सिंचाई का जैसे अधिकतर दाना जब भरने लगता है उसमें तो बहुत ज्यादा सिंचाई, अगर सिंचाई सही से नहीं कीजिएगा तो दाना सही नहीं भरेगा।
0: अच्छा, वो फल जो आता है, बाल जो आती है, तो आने से और जर्मिनेशन होने से लेके बाल आने तक कितनी बार सिंचाई करना चाहिए?
1: वो तो मौसम के अनुसार है,
0: मौसम के अनुसार।
1: अब गर्मी है तो उसमें तो एक से मतलब एक दिन पटवन कर, 2 दिन के बाद तो पटवन करना है, उसमें सिंचाई करना है।
0: अच्छा, वो
1: मौसम के अनुसार सिंचाई का भाग,
0: जब दाना भरने लगता है उसके बाद से और फसल तैयार होने तक जो है कितना बार सिंचाई होनी चाहिए?
1: तो अगर सही अवस्था रह गया, गर्मी थोड़ा सा मीडियम रहा तो उसमें हमारा लगता है कि वही कम से कम 15 से 20 बार टाइम होगा सिंचाई करना उसमें।

0: फसल जो
1: तैयार होने तक।
0: हाँ तैयार होने को। कौन कौन सी बीमारियां इसमें लगती हैं?
1: बीमारी मकई में वही कीड़ा लग जाता है गाभा में, इसका
0: अच्छा
1: रोपाई में।
0: हाँ
1: तो इसका सही सब उपचार है, सही है वो कोराजिन करके दवा आता है डुपोंट कंपनी का।
0: अच्छा
1: सिंचाई मतलब रोपाई कर दिए उसके बाद जेमिनेशन हो गया, 10 से 15 दिन के अंदर में कोराजिन दवा का एक बार छिड़काव मतलब पौधा से लेकर थोड़ा सा जमीन में भी
0: हाँ
1: छिड़काव होना चाहिए, और दवा उसका छिड़काव नहीं करना है। उसके कोराजिन दवा ऐसा है कि एक बार छिड़काव कर दिया ना तो कीड़ा तो मारेगा ही और कीड़ा लगेगा नहीं, उपजाऊ में भी वृद्धि करता है, पौधा भी तंदुरुस्त और बाल भी लंबा लंबा आएगा, दाना भी ढंग का रहेगा।
0: अच्छा ये कैसे पता लगाएंगे कि जो है हमारे पौधे में जो है कीड़ा लग रहा है?
1: वो अपने साफ पता लग जाता है कि ऊपर में जो गाभा रहता है कीड़ा लगने के बाद वो सूखने लगता है धीरे धीरे।
0: अच्छा पत्ता जो है वो छेद
1: हाँ छेदा करता है वो अपने ऊपर देखेगा सूख गाभा उसका सिकुड़ने लगता है।
0: अच्छा मक्का की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है?
1: मक्का का फसल वही 50 से 60 दिन।
0: आप इतने बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं तो बाजार में ले जाने की क्या व्यवस्था है आपके पास?
1: बाजार का वही सुविधा है, टेम्पो है, सब है। और बाजार में आजकल जान रहे हैं कि मक्का हो गया कि सालों भर का उगाने से उसका बिक्री बढ़िया है, कहीं भी कोई बाजार में ले जाइए।
0: ये अब हम बात करते हैं गोभी की।
1: जी
0: गोभी इससे पहले भी आप जैसे कि बात बात में आपने कहा कि भाई गोभी फसल भी हम लगाए हुए हैं और इससे पहले गोभी हम ले भी चुके हैं। अभी आप जो गोभी लगाए हैं कितने दिनों पहले लगाए हैं?
1: गोभी तो हम लोग लगाए हैं सालों भर लगाते हैं, उसमें आजकल हाइब्रिड गोभी निकल के सबसे सुविधा हो गया कि आप जब चाहिए लगा सकते हैं उसका
0: सालों भर
1: हर मौसम में मतलब उपयुक्त है फूल गोभी।
0: अच्छा अभी जैसे कि मार्केट में अभी हम देख रहे हैं कि भाई अच्छा पैसा जो है मार्केट दे रहा है।
1: हाँ
0: क्या आपका कहना है?
1: हाँ अभी ये देखिए गर्मी का फूल हाइब्रिड का जैसे नोबेल का हो गया हैप्पी, उसके बाद है वही साइजेंटा कंपनी का 60-99। अगर पानी आपके पास अगर पूरा उपलब्ध है तो उसमें किसान फूलगोभी का खेती कर सकता है और बहुत बढ़िया आमदनी उसमें है, पानी का सुविधा है उसके लिए किसान।
0: पिछले 2-3 महीनों में जो है आपका बाजार जो है वो कैसा रहा?
1: कैसा बहुत बढ़िया, इस साल के अपेक्षा में बहुत बढ़िया रहा फूलगोभी का भाव। अभी तो हम बता रहे हैं करीब करीब 1 से 2 महीना होने चला, अभी करीब करीब 40 रुपये से ऊपर पर किलो
0: बेचे।
1: इसमें
0: कौन कौन सी बीमारी लगती है?
1: इसमें देखिए इसमें तो फूलगोभी बहुत नाजुक चीज है, उसमें आपको बिजरा तैयार करने से फूलगोभी तैयार करने में वो आपको कीटनाशक दवा का यूज बहुत जरूरी है करना, क्या कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसमें थोड़ा सा भी कीड़ा लग गया तो बर्बाद कर देगा फूलगोभी। इसमें बहुत मेहनत है कि दवा का छिड़काव आपको समय के अंतराल में हर समय के अंदर वही मतलब 5 दिन 6 दिन समय को देखते हुए मौसम जैसा करे उसके अनुसार से आपका दवा का छिड़काव तो एकदम नॉर्मल करना है, यार अगर किसान चूक गया तो फसल बर्बाद हो जाएगा।
0: यानी सुबह शाम जो है आपको खेत में आकर
1: हाँ उसमें ध्यान देना होगा आपको। फूलगोभी का खेती ऐसा है कि किसान कितनों मेहनत करे अगर दवा में चूक हो गया तो समझिए फसल बर्बाद।
0: कितने क्षेत्र में जो है मक्का और कितने एरिया में जो है आपने फूलगोभी लगाया?
1: मक्का का खेती तो मान लीजिए मतलब लाट बाय लाट लगा हुआ है, लेकिन मक्का खेती तो मान लीजिए 50 डिसमिल और फूलगोभी तो लाट बालाट बहुत ज्यादा लगा हुआ है।
0: अच्छा तो व्यापारी आता है लेने के लिए या आप लोग आसपास?
1: नहीं जैसा सुविधा अगर व्यापारी को बुलाइएगा तो घर आ जाता है, और नहीं तो फिर थोड़ा सा भाव चाहिए अधिक तो मार्केट ले जाना
0: पड़ता है। तो बारिश शुरू हो रही है, आगे जो है क्या प्लान है आपके आपके खेती बाड़ी का?
1: प्लान तो देखिए खेती बाड़ी का प्लान जब खेती बाड़ी पर आश्रित है तो प्लान अपने से बनाना होगा, किसी के भरोसे तो रहना नहीं है। इसके लिए मैं अगर पानी का थोड़ा सा ऐसा तो है देर पड़ रहा है देर से, इसके लिए सुविधा सिंचाई का करना होगा।
0: और आखिर में हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं?
1: सलाह देना चाहते हैं कि मेहनत कीजिए और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ऐसा नहीं है कि मेहनत का फल थोड़ा सा लेट है लेकिन मीठा होता है, इसके लिए मैं मेहनत कीजिए और खुशहाल रहिए और दूसरों को खुशहाल रखिए।
0: ये थे रामचंद्र प्रसाद जी जो हमारे किसान भाइयों को जो है बहुत अच्छी सारे अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, हमें उम्मीद है कि किसान भाइयों को ये बातचीत पसंद आई होगी। तो रामचंद्र जी आपने हमारे जो है किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मेहनत के फल मीठा वो है ऐसा मानना है रामचंद्र प्रसाद के। अभी मैंने सुनो लिए बात।

जी तो मक्का की उन्नत खेती, साथ ही साथ गोभी की खेती बड़ी अच्छी जानकारी देती हैं। हमारा उम्मीद है कि हम इनके श्रोता के ये बातचीत जो है पसंद आयल होते, और जितनी ये खेती करल थीन है उतनी खेती करे के कोशिश करते थीन। देखा कि सबसे पहली चीज़ जो है कि जानकारी, जानकारी अगर है तो हम इन हर क्षेत्र में आगे बढ़ हम इन बढ़ सकोइए। और जानकारी के अभाव में जो है, जानकारी की कमी में हम इन देखा कि हर क्षेत्र में पीछे रह सकोइए। तो अब ये जानकारी के बाद अब आखिर में हम इन बात करबे कि भी जब किसान खेत में होवो थीन तो और बरसात के मौसम में तो मौसमी घटना से कैसे किसान भाई बहन के बचल जाए, एकर पर भी हम इन जानकारी देबे बातचीत करबे। देखा कि सबसे अभी जो है मौसम खेती बाड़ी के मौसम है, बरसात के मौसम है, और ऐसन में किसान भाई बहन जो है अपन खेत में काम करो थीन, धान लगवे के समय आ रहल है, तो हम इन का का उपाय करिए कि हम इन जो मौसमी घटना है ओकर से हम इन बच सको हिए। तो सबसे पहले तो ये है कि जब मौसम विभाग की तरफ से देखा कि आप जानकारी देवल जाए, ओकर जानकारी होना जो है वो ज़रूरी हुआ है कि पूर्वानुमान जब ये हम इनके जानना ज़रूरी हो जाए। दूसरी बात यह कि बिजली की चमक और तेज़ गरज जो होवे पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर जो है चल जाना चाहिए। पेड़ के नीचे, बिजली के खंभा के नीचे और खुले स्थान में ना रहना चाहिए। देखा कि आमतौर पर होगा कि भाई जब हम जाइए कहीं पे तो अचानक बारिश शुरू हो जाए तो पेड़ के सहारा लेइए, पेड़ के नीचे खड़ा हो जाइए, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और आमतौर पर देखा कि जो बिजली गिरोह है वो वीरान जगह में पेड़ पौधे पर ही जो ज़्यादा गिरोह है, तो हम इनके पेड़ के नीचे ठहरे से बचे के चाहिए, और जहाँ तक संभव हो ज़मीन में लेट जाना चाहिए, वो ज़्यादा सुरक्षित मानल जाए। और साथ ही साथ देखा कि रेन कोट, गम्बूट और ज़रूरी सुरक्षित उपकरण के जो है वो इस्तेमाल करे के चाहिए। और साथ ही साथ तेज़ आंधी और बारिश के समय काम जो है बंद कर देना ज़्यादा बेहतर हो वो है। तो अगर ये छोट छोट बात पर अगर हम इन ध्यान देवे तो हम इन जो है अपन सुरक्षा हम इन खुद से कर सकबे। और देखा कि ऐसे समय में जब गरज और मलक हो तो जो मेटल के चीज़ है, लोहा वाला चीज़ है, एकर पास भी हम इनके ना बैठक चाहिए और न जो है सामान के छुए के चाहिए। तो यह जानकारी के साथ देखा कि हम इनके अपन जो कार्यक्रम के जो समय है खेती बाड़ी के यहीं समाप्त हो रहे हैं। तो यह समाप्ति के साथ हमारा नसीम के कार्यक्रम खेती बाड़ी से अनुमति दा। जोहार, नमस्कार, आदाब।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारी रांची केंद्र से।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ के पास जमा करने की अपील की है, ताकि 5 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा सके। 22 जुलाई को एएसटीडी सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। पाकुड़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने एसआईआर में लापरवाही बरतने पर बूथ संख्या 213 के बीएलओ, सुपरवाइजर और सहायक निर्वाचन

0: गठबंधन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। निरीक्षण के दौरान कुछ मतदाताओं को गलत तरीके से अनुपस्थित और स्थानांतरित श्रेणी में दर्ज किए जाने का मामला सामने आया। धनबाद के मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पोस्टमास्टर राजीव कुमार ने बताया कि धमकी भरा मेल मिलने के तुरंत बाद एहतियातन पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। झारखंड आंदोलनकारी और झामुमो नेता प्रोफेसर कालीपत सोरेन ने सरायकेला खरसावां एसपी मनोज स्वर्गियारी से मुलाकात कर रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने राजनगर क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आग्रह किया। साहिबगंज में युद्धकालीन परिस्थितियों से बचाव के लिए जिला प्रशासन, एनसीसी और जैप 9 के जवानों ने संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। अपर समाहर्ता विजय कुमार ने बताया कि नागरिकों को जान माल की रक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए आज रात 8 बजे स्टेशन चौक पर एयर अटैक से बचाव की विशेष मॉक ड्रिल की जाएगी। झारखंड में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा और ऐतिहासिक रथ मेलों को लेकर राज्यभर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज पट खुलने के साथ ही अनुष्ठान शुरू हो गया है, जहां कल शाम भगवान का रथ मौसीवाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:02 और 27 सेकेंड्स। लीजिए अब सुनिए युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी। मैं हूं अनामिका। उम्मीद है हमारे सभी दोस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कार्यक्रम सुन रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर युवा के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है। लेकिन पहले क्यों न एक गीत सुन लिया जाए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना प्रोग्राम युवाणी, और आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय है कौशल विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में युवाओं की भूमिका। हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशल से जोड़ना है जो उन्हें रोजगार योग्य बनाए और देश के विकास में उनकी भागीदारी को और मजबूत करे। दोस्तों, आज समय केवल डिग्री

0: हासिल करने का नहीं बल्कि कौशल हासिल करने का है, क्योंकि आज कंपनियां केवल यह नहीं देखती कि आपने क्या पढ़ा है बल्कि यह भी देखती है कि आप क्या कर सकते हैं। कौशल का मतलब केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, अच्छी संवाद क्षमता, टीम में काम करने की क्षमता, समय का सही प्रबंधन, नेतृत्व, डिजिटल जानकारी और नई चीजें सीखने की इच्छा भी महत्वपूर्ण कौशल है। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। यदि हमारे युवा कुशल होंगे तो वे न केवल अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे बल्कि दूसरों को भी रोजगार देंगे। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत नींव है। आज सरकार भी कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों, डिजिटल शिक्षा, स्वरोजगार योजनाओं और स्टार्टअप संस्कृति के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। लेकिन इन अवसरों का लाभ तभी मिलेगा जब युवा सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी आज अनेक अवसर उपलब्ध हैं। आधुनिक खेती, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, हस्तशिल्प, डिजिटल सेवाएं और ऑनलाइन व्यवसाय जैसे कई क्षेत्र रोजगार के नए रास्ते खोल रहे हैं। आज इंटरनेट ने सीखने की दुनिया को आसान बना दिया है। कोई भी युवा घर बैठे नई भाषा, कंप्यूटर, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य तकनीकी कौशल सीख सकता है। इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जरूरत होती है केवल लगन और निरंतर प्रयास की। युवाओं को यह भी समझना होगा कि नौकरी सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं है। यदि आपके पास अच्छा कौशल, नए विचार और मेहनत करने का जज्बा है तो आप स्वयं का व्यवसाय शुरू करके दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का हर युवा आत्मविश्वासी, कुशल, जिम्मेदार और नवाचार की सोच रखने वाला हो। देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और उनका कौशल ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो साथियों, आइए इस विश्व युवा कौशल दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि हम जीवन भर सीखते रहेंगे, अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाएंगे और अपने ज्ञान तथा मेहनत से एक सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो ये तो हो गई आज की बातचीत। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवा रहे हैं आपको ये भेंटवार्ता, संस्कृत को बनाए जनोपयोगी भाषा। डॉक्टर सुबीर कुमार और राजदीप घोष से बातचीत कर रहे हैं प्रमेंद्र कुमार मिश्रा। ये भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण है।
1: श्रोताओं, यूं तो संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कई पहल किए जा रहे हैं सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर, लेकिन हमारे विनोबा भावे विश्वविद्यालय में भी इस ओर कई पहल किए जा रहे हैं। आज इसी संदर्भ में हम बातचीत करते हैं पाठ्यक्रम समन्वयक श्री सुवीर कुमार सर से। सर, आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: आप हमें ये बताइए कि संस्कृत के लिए जो पहल की जा रही है वो क्या है और इस पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
2: सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग टीम है जो कि दिल्ली की है, उन लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में कोर्स बना रखे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, हर एक स्टेट वाइज, जिनको उन लोगों ने अप्रूवल दिया है कि आप कोर्स चला सकते हैं। जिनके लिए वो किया है, एक टीचर का वो सेंटर फॉर संस्कृत वो लोग डिप्यूट करते हैं, हर एक संस्था में वो टीचर आते हैं और वो 2025-26 का जो सेशन है हमारे यहाँ यूसेट को मिला है, हजारीबाग में इंजीनियरिंग कॉलेज जो विनोबा यूनिवर्सिटी के अंदर में यूसेट है उसको सेंटर मिला है, जो अगले साल 2026 तक हमारा ये कोर्स चलेगा।
1: मतलब मई 2025 से लेकर के मई
2: 2026 तक चलेगा। ये 8 क्रेडिट का कोर्स है, ठीक है, जिसमें 120 डेज क्लासेस होंगे। हमारा प्रोग्राम क्या है कि जिस अनुसार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा उनके हिसाब से हम लोग फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन हम लोग क्लास के लिए देंगे। जो भी टाइम शेड्यूल होगा हम लोग प्लान उस अनुसार से बना लेंगे। इस कोर्स में क्या है कि 1200 रूपये रजिस्ट्रेशन फी है। आपको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग का लिंक है, आप उसको लॉगिन करना है, उस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर जो भी बच्चे ये फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स है जो पास कर लेंगे, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, इच्छा हो गई कि हमें सर्टिफिकेट लेनी है, तो उन्हें फिर से उसी पोर्टल पे जाके एग्जामिनेशन फी 300 रुपए देके रजिस्ट्रेशन कर लेना है एग्जामिनेशन का, जो नेक्स्ट ईयर 2026 में मई में होगा, और वो एग्जाम ऑनलाइन होगा। जो भी ऑनलाइन एग्जाम देकर के पास हो जाएंगे उनको सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग वो फर्स्ट लेवल सर्टिफिकेट का, संस्कृत का नॉलेज का डिग्री दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें क्या है, 1200 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फी आपको लगेंगे उसमें सेंट्रल टीम ने 5 बुक आप लोग को देगी, 500 रुपए की बुक वो लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जिसमें मैं आपको बता दूं, फर्स्ट बुक वर्णमाला का होगा, दूसरा वाक्य व्यवहार का होगा, तीसरा वाक्य विस्तार का होगा, चौथा संभाषणम का होगा और परिसिस्टम का होगा। माना जाए तो इस 5 मॉड्यूल में इन्हीं चीजों को पढ़ाया जाए, ठीक है। खुले शब्दों में बोलूं तो संस्कृत का हमें चाहत है कि एक दूसरे के जवानी पे आ जाए, जैसे हम और आप दोनों आदमी जो बात कर रहे हैं हिंदी में
1: मातृभाषा
2: के रूप में जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो क्लास में, क्लास करने के बाद जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे, हमारा इच्छा होगा कि हम लोग संस्कृत में बात करके, हम यही सीखें।
1: बहुत अच्छी पहले सर,
2: हाँ, कि सभी सेंट्रल की भी यही सोच है, संस्कृत लर्निंग का भी यही सोच, उनका यही फर्स्ट मोटो भी है कि कम से कम सीखा जाए, दैनिक भाषा में वो यूज करा जाए, मातृभाषा के रूप में यूज हो जाए
1: जी। अब ये सिर्फ देवभाषा नहीं है सर, ये तो हम लोग की जितनी भी पुस्तकें हैं, पुरानी पुस्तकें, वो सभी संस्कृत भाषा में
2: है।
1: बहाने हम जितने भी हमारी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का अध्ययन करके हम अपने संस्कृति को बेहतर समझ सकते हैं,
2: ठीक है। अगर लगता है कि किन्हीं को और ज्यादा पढ़ना है, जैसे 1 ईयर कोर्स करने के बाद उनको लगे नहीं मुझे और पढ़ना है, तो उसके बाद उनको दक्षता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
1: वो कितने
2: जो ये कोर्स कर लेंगे उनको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए फिर से दिया जाएगा, उसमें ये अभी 8 क्रेडिट का है जो अगले दक्षता का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 12 क्रेडिट का होगा, वो भी 1 ईयर का कोर्स होगा, और हमारे ही संस्थान में जो पास करेंगे वही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको उचित दिया जाएगा। फिर हमारे यहाँ से सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग ने एक शिक्षक को नियुक्त कर रखा है, राजदीप घोष जी हैं, संस्कृत के शिक्षक हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे जानकार हैं
1: जी,
2: है ना, उनका भी पकड़ अच्छा है सब्जेक्ट में, घुलनशील भी है सब्जेक्ट के मामले में, संस्कृत मातृभाषा है तो घुलनशील लोग रहे तो ज्यादा बेहतर है, वो भी आपको इस पे विशेष बातें पे आपको प्रकाश डाल के समझा सकते हैं कैसे।
1: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस पाठ्यक्रम के बारे में और संस्कृत के बारे में बहुत अच्छी और सम्यक जानकारी दी। और अब हम बातचीत करते हैं राजदीप घोष जी से, जो इस संस्कृत पाठ्यक्रम के शिक्षक हैं, और इनसे जानते हैं कि आज संस्कृत की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है, और पाठ्यक्रम को किस तरह से पढ़ाएंगे। सर आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
3: हाँ नमस्कार सर, सभी लोग जानते हैं कि हमारा संस्कृत भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन भाषा है, जहाँ से बहुत सारे भारतीय भाषाओं का सृष्टि हुआ है। तो वो जो भाषा सृष्टि हुआ है संस्कृत भाषा से, वो हम हिंदी बांग्ला जैसा है वो हम कम बेसी जानते हैं, लेकिन उसका उत्स जो है संस्कृत भाषा, उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता नहीं है। हम संस्कृत में पढ़ सकते हैं लेकिन नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते, तो इसलिए समाज के सभी लोगों के लिए, सभी लोग संस्कृत जैसे पढ़ सके, लिख सके, कह सकते हैं, इसलिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अनौपचारिक संस्कृत शिक्षणम ये एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसका अभी वर्तमान नाम है संस्कृत अध्ययन केंद्रम, सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग, जहां संस्कृत का बहुत प्रचलन नहीं ही है, मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज जैसा है, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा है, वहां संस्कृत पढ़ाने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा ये संस्कृत अध्ययन केंद्र शुरू हुआ है, जहाँ 2 कोर्स रहते हैं, एक संस्कृत भाषा प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम है और दूसरा संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम है। सर ने भी जो बताया, सुबीर सर ने, वो कोर्स पहले जो 15 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले सभी लोग ये सर्टिफिकेट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट कोर्स में उत्तीर्ण जो होंगे जो स्टूडेंट, तो उन लोगों के लिए डिप्लोमा कोर्स भी है जो दक्षता पाठ्यक्रम है। ये दोनों ही क्रेडिट बेस्ड कोर्स है, वो फर्स्ट वाला जो है सर्टिफिकेट कोर्स वो 8 क्रेडिट का है और डिप्लोमा कोर्स 12 क्रेडिट का है। तो जो स्टूडेंट अभी वो पढ़ेंगे उन लोगों को संस्कृत के बारे में पता चल जाएगा। वो हमारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है जैसा है वो एक महीने के अंदर ही संस्कृत भाषा में बातचीत कर सकते हैं, ऐसा ही हमारा संस्कृत कोर्स है।
1: तो ये दूसरी यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की कोशिश की जा रही है?
3: ऐसा है, ये झारखंड राज्य में दोनों सेंटर है, दोनों जगह में, एक तो हजारीबाग में हमारा यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में यूसेट में है, और एक चल रहा है रांची में, वो एनएन घोष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ऐसा कुछ नाम है, वहाँ भी एक सेंटर चल रहा है। वहाँ से लोग, रांची का लोग वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ हजारीबाग के लोग यूनिवर्सिटी में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इससे मतलब वो जहाँ मतलब हजारीबाग के अंदर ही जो लोग यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको संस्कृत के बारे में जानना आवश्यक है, तो उनके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ उन लोगों के पास जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन कुछ है तो वहाँ भी हमारा सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग का केंद्र खुल सकते हैं, वहाँ पर भी वो समाज के लोगों के सुविधा के अनुसार, तो सभी लोग जैसे संस्कृत पढ़ सके, लिख सके, बातचीत कर सके संस्कृत भाषा में, इसलिए वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है, हम लोग भी इसको सहायता प्रदान कर रहे हैं, ऐसा ही।
1: अच्छा सर, देख रहे हैं कि जैसे पहले प्राकृत भाषा थी, तो प्राकृत भाषा के बाद इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इसके बाद देख रहे हैं संस्कृत जो है वो आम भाषा नहीं बनकर रह गई, वो किताबों तक सीमित होकर रह गई है, तो जन जन तक इसकी पहुंच हो इसके लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है?
3: हाँ, अभी तो ऐसा चल रहा है, ये यूनिवर्सिटी में ऐसा कोर्स हो रहा है, तो इसके भी प्रचार प्रसार करने के लिए हमारा वो पोस्टर बना हुआ है, एक नोटिस बना हुआ है, वो सभी डिपार्टमेंट में जाकर आसपास में जो कॉलेज है डिपार्टमेंट है वहाँ HOD जो है डिपार्टमेंट में, तो उन लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सब भेज देते हैं, और ये पोस्टर वहाँ नोटिस बोर्ड के, हर डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड में भी लगाते हैं, फिर वो समाज के जो लोग हैं उनको भी ये पोस्टर दिए जाते हैं, और ऐसे आकाशवाणी ऐसे प्रचार प्रसार जो माध्यम है मीडिया के थ्रू, ऐसे ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। यहाँ संस्कृत का कोर्स चालू हो रहा है, अब सभी लोग आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बात है सर कि आप मतलब इस पाठ्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद जो एक वर्ष का सत्र आपने बताया, तो इसके बाद उसका कैसे लाभ, क्या क्या लाभ ले सकते, किस तरह से उसका मतलब लोग क्यों जुड़े, ये भी तो सोचेंगे कि हमको क्या लाभ मिलेगा। छात्र जुड़ना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, सीखने की ललक होती है, तो उनको क्या लाभ मिलेगा इस पाठ्यक्रम के बाद?
3: पहले तो वो जो स्टूडेंट एनरोल करेंगे उनको एक भाषा के बारे में पता चल जाएगा, मतलब वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज जानते हैं और अभी इंग्लिश जान रहा है, लेकिन संस्कृत ये कोर्स करने के बाद उसको, उन लोगों को संस्कृत भी पता चल जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा लैंग्वेज के बारे में पता चल जाएगा, और ये एक सर्टिफिकेट भी उन लोगों के सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के थ्रू मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट बहुत जगह में उनको बाद में नौकरी करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं।
1: हाँ,
3: ऐसा नहीं, वो मतलब वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है लेकिन संस्कृत शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहा है, उनका तो ज्यादा नहीं, मतलब उन लोगों को तो ग्रेजुएशन में संस्कृत रखना पड़ेगा, मास्टर्स में रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह में उन लोगों को बेनिफिट हो सकता है, मतलब दो स्टूडेंट है एक इंटरव्यू में, तो मैं बोल रहा हूँ हमको इंग्लिश बंगाली और हिंदी लैंग्वेज पता है, और एक स्टूडेंट बोल रहा है मैं संस्कृत भी जानता हूँ, हिंदी बांग्ला इंग्लिश भी जानता हूँ, तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ऐसा हमारा जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सर है श्रीनिवास बरखेड़ी जी है, उन्होंने एक बार कहा था, मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वो बेलूर में था ग्रेजुएशन और मास्टर्स रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी, तो श्रीनिवास बरखेड़ी सर वहाँ पर एक बार गए थे, वक्तृता में एक बार बताया कि UPSC का जो प्रिपरेशन ले रहे हैं जो छात्रों, तो उन लोगों को संस्कृत पता है तो उनको पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं, मतलब ऐसा बहुत सारे जगह में उनको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकता है ये कोर्स करने के।
1: सर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में भी संस्कृत को बहुत, उसके जो ग्रामर है देखा जा रहा है कि कंप्यूटर के लिए बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज उसको कहा जा रहा है, तो ये मतलब इसके बारे में कुछ जानकारी आप हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएं।
3: ऐसा ही है, वो जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपने कहा है वो कंप्यूटर के बारे में, संस्कृत ऐसा रिसर्च ने ऐसा कहते हैं कि कंप्यूटर को जो मतलब हम कंप्यूटर को सिखाते हैं हिंदी लैंग्वेज या फिर बंगाली लैंग्वेज, उससे पहले ही वो संस्कृत सीख जाते हैं कंप्यूटर। ऐसा है मतलब वो संस्कृत के भाषा इतना सुंदर है और साइंटिफिक है तो इसलिए कंप्यूटर सीख जाते हैं। ऐसा एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, बांग्ला में कहे तो एक वाक्य बताता हूँ, राम विद्यालय जाच्छे, हिंदी में राम विद्यालय जा रहा है। ये अब एक एक वाक्य एक एक भाषा में आप देखे हैं, लेकिन संस्कृत में भी ये भाषा, ये जो वाक्य मैंने बताया, ये बहुत सारे मतलब एक ही वाक्य उसका जो क्रियापद है कर्ता कर्म है वो विभिन्न जगह में बैठा दिया तो एक ही अर्थ निकल कर आएगा संस्कृत। हाँ, जैसे राम विद्यालय जा रहा है, ये संस्कृत में हम ऐसे कह सकते हैं, रामः विद्यालयं गच्छति, रामः गच्छति विद्यालयं, विद्यालयं रामः गच्छति,
1: एक ही अर्थ।
3: हाँ, एक ही अर्थ है, विद्यालयं गच्छति रामः, गच्छति विद्यालयं रामः, गच्छति रामः विद्यालयं। ऐसा है जो अन्य भाषा में हमको नहीं पता है ऐसा होता है। हाँ, लेकिन संस्कृत में भी ऐसा है, जो इसलिए ही संस्कृत को साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाता है, उनका जो व्याकरण है इसलिए वो कंप्यूटर भी
1: आसानी से
3: संस्कृत को सीख जाता है। ऐसा ही
1: तो संस्कृत को सर्वग्राह्य बनाने के लिए और जन जन की भाषा बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, लोगों में कैसे जागरूकता है सर?
3: ऐसा हम लोग सोच रहे हैं जो संस्कृत कोर्स को करेंगे उन लोगों को पहले ये तो लैंग्वेज वो सीख जाएंगे, और उसके बाद हम दैनिक जीवन में नियत संस्कृत का व्यवहार कर रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं है, मतलब हम पूजा पाठ आदि कम करते हैं, वो स्तोत्रों गीता रामायण महाभारत पुराण पढ़ते हैं, वो संस्कृत में पढ़ते हैं, लेकिन उस वहाँ क्या अर्थ है, क्या निगूढ़ अर्थ है वो हम लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन वो संस्कृत सीख जाने के बाद हम इतने दिनों तक जो स्तोत्र पढ़ा है, जो वेद पढ़ा है, गीता का अध्ययन किया है, तो वहाँ से क्या अर्थ आ रहा है संस्कृत सीख जाने के बाद ही हमको पता चल जाएगा। और अभी वो संस्कृत को सभी को संस्कृत के अभी जो जेनरेशन है, अगला जेनरेशन हम लोग सीखेंगे तो बाद में ही हम जेनरेशन को बता सकते हैं कि संस्कृत में ऐसा ऐसा है, हमारा जो वेद पुराण आदि सब ग्रंथ है ऐसा है, वहाँ ऐसा कहा है। हम लोग नहीं सीखेंगे तो हम नेक्स्ट जेनरेशन को नहीं बता पाएगा, तो इसलिए पहले हम लोगों को भी ये सीखना पड़ेगा
1: संस्कृत।
3: हाँ, ऐसा ही है। और एक मैं कह चाहता हूँ, ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो ये प्रयास है, ये बोल रहा है कि ये संस्कृत भाषा जनभाषा होना चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में यूसेट में सर्टिफिकेट कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए बताऊंगा, वो csucsl.samarth.edu.in इस लिंक पर जाइए और वहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
1: तो मुझे लगता है सर कि ये बात हमारे श्रोता जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि अगर अपने संस्कृति को समझना है, अपने देश को समझना है, अपने वेद और पुराणों को समझना है तो मुझे संस्कृत सीखनी चाहिए, ताकि हम कुछ बोल लें, कुछ पढ़ लें, और तभी हम जो है इन सब को समझ सकेंगे, और जब हम अपने संस्कृति को अगर समझ लेंगे तो हमारा देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर होगा। सुवीर कुमार सर और राजदीप घोष सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: इसी भेंट वार्ता के साथ आज के कार्यक्रम युवाणी का समय दोस्तों यही समाप्त होता है। दीजिए अपनी दोस्त अनामिका को अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अजूबा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे राज्य केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया के अंतर्गत घरनी सभा। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 7 बजने को है, बस थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड के राजखसवा टांगुआ पोसी चौथी रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी, रेल नेटवर्क होगा मजबूत। राज्यपाल ने बीआईटी मिश्रा के 7 दशकों के योगदान को सराहा, युवाओं को एआई और रोबोटिक्स से जोड़कर जॉब क्रिएटर बनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की, लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई और कार्यों की जियो टैगिंग के दिए सख्त निर्देश। राज्य में एसआईआर अभियान तेज, सांसद संजय सेठ ने जागरूकता वाहन को किया रवाना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 29 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अपील की। और राज्य के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक धनबाद के वासेपुर में राजकीय सम्मान के साथ हुए सुपुर्द खाक, विभिन्न राजनेताओं और आम लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज झारखंड और ओडिशा के लिए 3,907 करोड़ रुपए की 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके तहत झारखंड में राजखरसवां डांगुआ पोसी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे माल ढुलाई और रेल नेटवर्क सुदृढ़ होगा।
2: ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो पैराडीप वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स है, करीब 300 मिलियन टन्स की इसकी कैपेसिटी है। पैराडीप सर्व करता है, नॉर्थ में पूरा स्टील हब है, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, बौनपुर है, बोकारो है। इन स्टील हब्स को पैराडीप पोर्ट से कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर का मूवमेंट, ये सारा का सारा पैराडीप से होता है।
1: इसके साथ ही कैबिनेट ने सेमिकॉन 2.0 मोबाइल फोन विनिर्माण योजना और यूरिया क्षेत्र के लिए NIPU 2026 नीति को भी स्वीकृति दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बीआईटी मिश्रा के स्थापना दिवस पर संस्थान के 7 दशकों के शैक्षणिक व तकनीकी योगदान की सराहना की। उन्होंने NEP 2020 के तहत युवाओं को AI और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों से जोड़कर जॉब क्रिएटर बनाने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज पथ निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पारदर्शिता के लिए सभी सड़कों, फ्लाईओवरों और पुलों की अनिवार्य जियो टैगिंग तथा सुव्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने का आदेश दिया। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पलामू समाहरणालय में आयोजित समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने IDBI बैंक के CSR फंड से 10 दिव्यांगजनों को ट्राई स्कूटी बांटी। इस दौरान उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री ने राज्य के विकास के लिए बैंकों से CD रेशियो बढ़ाने और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के खर्च की पारदर्शी निगरानी करने की बात कही। आज देश में स्किल इंडिया मिशन की 11वीं वर्षगांठ और विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराजधानी दुमका में आज विश्व युवा कौशल दिवस पर 4 झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साझा भविष्य के लिए कौशल विषय पर आयोजित इस समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष सुधीर कुमार मंडल और कर्नल अनिल यादव ने युवाओं से सरकारी कौशल योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की अपील की। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत आज एक जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर रांची के सांसद संजय सेठ ने नागरिकों से अपील की कि वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मतदाता विवरणों का समय पर सत्यापन और आवश्यक संशोधन अवश्य कराएं।
4: ऐसा पता चल रहा है मीडिया के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से, कि अभी प्रतिशत कम है, जिसका परिणाम है कि लोग के बीच जागरूकता की हो सकता कमी हो। तो इसके गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर लोगों को जागरूक करना कि भाई आप गणना फॉर्म जरूर भरें, और यह गणना फॉर्म है तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा। SIR 29 जुलाई को समाप्त हो रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जिसका गणना फॉर्म नहीं भरा हो।
1: इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फॉर्म BLO के पास जमा करने की अपील की है, ताकि 5 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा सके। 22 जुलाई को ASDD सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए देशभर में जारी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं। अभियान के झारखंड प्रभारी अभय आश्रय दास ने प्रेस वार्ता में बताया कि आगामी 27 जुलाई को देश के सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसके बाद दूसरे चरण में 15 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
5: इस अभियान का यही उद्देश्य है कि संपूर्ण भारतवर्ष में गाय माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, पहला। दूसरा, सभी गौ माताएं जो आयु के आधार पर हत्या ना की जाए। तीसरा, गाय की रक्षा के लिए संविधान में संशोधन कर एक कठोर राज्य और केंद्र कानून बनाए।
1: खूंटी पुलिस ने तजना नदी पुल के पास हुए दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था।
6: जिस लड़की की हत्या हुई है, वो लड़की का अपने पति से काफी दिन से विवाद चल रहा था। इनका आपस में कोर्ट में एक मेंटेनेंस का केस भी चल रहा था, और यह लड़की अपने 5 साल के बच्चे को, जो कि इसके पूर्व पति के साथ रह रहा था, उसको लेने के लिए उसके पास गई थी। उसी क्रम में इन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद घटना को इसके पति ने अंजाम दिया।
1: राज्य के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन्नान मलिक को आज धनबाद के वासेपुर स्थित शमशेर नगर कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। झारखंड में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा और ऐतिहासिक रथ मेलों को लेकर राज्यभर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज पट खुलने के साथ ही अनुष्ठान शुरू हो गया है, जहां कल शाम भगवान का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में आज दोपहर से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच मौसम केंद्र रांची ने तात्कालिक पूर्वानुमान जारी कर राज्य के चतरा, गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड के राजखरसावां डंगवापोसी 34 रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी। रेल नेटवर्क होगा मजबूत। राज्यपाल ने BIT मिश्रा के 7 दशकों के योगदान को सराहा। युवाओं को AI और रोबोटिक्स से जोड़कर जॉब क्रिएटर बनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की, लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई और कार्यों की जियो टैगिंग के दिए सख्त निर्देश। राज्य में SIR अभियान तेज, सांसद संजय सेठ ने जागरूकता वाहन को किया रवाना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 29 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अपील की और राज्य के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक धनबाद के वासेपुर में राजकीय सम्मान के साथ हुए सुपुर्द खाक। विभिन्न राजनेताओं और आम लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: खरीफ फसल की बुआई को लेकर कृषि विभाग की ओर से 91,500 हेक्टेयर में किसानी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 3,065 हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी है, जो लक्ष्य का 6% है। साथ ही राज्य में मिलेट योजना के तहत गोड्डा में मड़ुआ फसल को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य से दोगुना खेती की गई है।
2: हमारे गोड्डा जिले में धान का टारगेट 51,500 हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है वित्तीय वर्ष 2026-27 में। इसके विरुद्ध अभी तक हमारे गोड्डा जिले में 3,065 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो कुल टारगेट का लगभग 6% होता है। इसके साथ झारखंड में एक योजना चल रही है, झारखंड स्टेट मिलेट मिशन योजना। ये योजना के तहत मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें हमारे गोड्डा जिला का लक्ष्य 862 हेक्टेयर है, जिनके विरुद्ध लगभग 1800 हेक्टेयर एरिया कवर कर चुके हैं हम लोग, जो हमारा लक्ष्य से लगभग दोगुना है।
1: ललमटिया थाना क्षेत्र के निमा कला गांव, जो ईसीएल प्रभावित गांव है, इस क्षेत्र का रहने वाला 22 वर्षीय देवगन मरांडी ने नेपाल के खिलाफ फाइटिंग कर आज गोड्डा जिले सहित राज्य का नाम रोशन किया है। दिल्ली में एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट की प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फाइटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया तथा नेपाल को 17 मिनट में पराजित कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया है।
3: 3 मिनट का राउंड होता है, फर्स्ट राउंड हुआ, इसमें 17 सेकंड में नॉकआउट किए। सब फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली वाला का दिलासा था मैं कर लूंगा।
1: जिला मुख्यालय में गत दिनों राजद के 30वां स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केक काटा और सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीबों और दलितों की आवाज उन्होंने हमेशा बुलंद किया है।
4: पक्ष के लोग भी करते हैं, विपक्ष के लोग भी करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांतों को शायद वो लोग नहीं जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कोई बिकाऊ माल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल वो टिकाऊ माल है। अगर बिकाऊ माल रहता तो संजय यादव भी आरएसएस और बीजेपी की गोद में खेल लड़ाई लड़ना पसंद किया, गोली खाना पसंद किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
1: आस्था का सबसे बड़ा केंद्र शहर के कनवारा गांव में गत दिनों नागवासुकी मेला के रूप में संपन्न हुआ। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर भगवान नाग देवता की पूजा अर्चना की तथा उन्हें डाली चढ़ाया। नागवासुकी मेला करीब 125 वर्षों से आयोजित होता रहा है। 15 दिनों तक चले पूजा के दौरान यहाँ के लोग नशा से पूरी तरह से मुक्त रहते हैं। गोड्डा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गत दिनों शहर के बीचों बीच स्थित बंगाल ज्वेलरी नामक आभूषण दुकान में 3 शातिर अपराधियों ने धनाधन गोली चलाकर करीब 50 लाख रुपए के आभूषण एवं नगद राशि लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद 2 दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही अपराधी देवघर जिले के बताए जाते हैं, जिसके पास से 38 ग्राम सोना एवं 45,000 रुपए पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही इस घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त हथियार वो बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है।
5: आसपास के जितने जिले हैं, जामताड़ा, देवघर, तुमका और माँ का, इसमें ये गैंग अभी तक नहीं पकड़ा गया है और ये सब जगह जितने भी ज्वेलरी लूट के केस हुए इसी ने, और जो मास्टरमाइंड है जो आपने देखा है, जो फुटेज आप लोगों ने भी देखा, वो वही है। हम लोग उसके बाद वर्कआउट कर रहे हैं, जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर।
0: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

अलका याग्निक और शंकर महादेवन की आवाजें थी इस गीत में। फिल्म का नाम था चाइना गेट। और अब विशाल ददलानी, हमशिका अय्यर और श्री शरण की आवाजों में सुनवा रहे हैं प्रोग्राम का अगला गाना। फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस।

ये था फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम है ऑल टाइम हिट्स।

चमेली फिल्म का ये गाना था सुनिधि चौहान की आवाज में। और अगला गाना आशा भोसले, उदित नारायण और वैशाली की आवाज में, फिल्म का नाम लगान।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय है कार्यक्रम कानूनी सलाह का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको पुनः प्रसारित ये बातचीत सुनवा रहे हैं पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार विषय पर। मनोज कुमार सिन्हा से बातचीत कर रही हैं अंजलि सिन्हा।
1: श्रोताओं, हम लोग हमेशा यह कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान है, लेकिन हर क्षेत्र में समानता नहीं कर पाते, खासकर धन संपत्ति के मामले में। अपने बेटे को ही सारी धन संपत्ति का उत्तराधिकारी मानते हैं, लेकिन बेटियों को नहीं। उन्हें हमेशा पराया धन, पराए घर की धरोहर ही मानते हैं, जबकि संविधान के अनुसार समता का मौलिक अधिकार लागू है। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट रांची के वकील श्री मनोज कुमार सिन्हा जी से, जो पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार के बारे में बताएंगे। तो मनोज जी, आपका हमारे इस कानूनी सलाह कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि पैतृक संपत्ति क्या है।
2: पैतृक संपत्ति पिता दादा या परदादा से मिली हुई संपत्ति को ही माना जाता है। वैसे तो बच्चा जन्म से ही उत्तराधिकारी हो जाता है। विरासत में मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है। पूर्व की संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है उसे ही पैतृक

0: संपत्ति कहा जाता है। पैतृक संपत्ति का वजूद केवल हिंदू परंपरागत विधि में है। 17 जून 1956 से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावी होने के उपरांत नई पैतृक संपत्ति अस्तित्व में आना असंभव हो चुका है। इस कारण जो भी संपत्ति इस तिथि के पूर्व मिली किसी पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से उत्तराधिकार में, वही पैतृक संपत्ति है।
1: अच्छा, ये तो आप बता दिए कि पैतृक संपत्ति क्या है, और अब ये बताइए कि पैतृक संपत्ति कैसे प्राप्त होती है।
0: पैतृक संपत्ति किसी को भी कानूनी उत्तराधिकार से प्राप्त होती है, पहला। दूसरा, वसीयत द्वारा प्राप्त होती है, जिसे विल कहते हैं
1: जी।
0: और तीसरा, दान, डीड ऑफ गिफ्ट द्वारा पिता को जो संपत्ति प्राप्त होती है, पिता को संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए
1: जी,
0: उसे ही पैतृक संपत्ति माना गया है और कानून के अनुसार उसे ही पैतृक संपत्ति कहा जाता है।
1: अच्छा, उसके बाद है कि हिंदू महिला के अलावा मुस्लिम एवं ईसाई महिला के पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार है, वो बताइए।
0: मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम धर्मावलंबी पुत्रियों को पुत्र का आधा अर्थात 50% 50% भाग मिलने की चर्चा है, बराबर नहीं। मुस्लिम विधि के अनुसार यही मुस्लिम महिलाओं को प्राप्त होता है
1: जी।
0: संपत्ति पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। उत्तराधिकार का पालन मुस्लिम धर्म में कड़ाई से होता है। उपहार या उत्तराधिकार कानून में पुरुष के अंश 1/3 भाग रोकने का एक साधन भी माना गया है। पुत्री अविवाहित है तो पिता के घर में निवास करेगी, भरण पोषण विवाह तक ही उसका होगा अपने पिता के घर। लेकिन अगर मुस्लिम महिला का तलाक हो जाता है तो इद्दत की अवधि, कानून में इद्दत की अवधि कहा गया है
1: जी,
0: वह 3 माह की होती है, तो वह उसके बाद पिता पर दायित्व है भरण पोषण का। परंतु यदि उसकी संतान वयस्क है तो उस महिला के भरण पोषण का कर्तव्य और दायित्व पुत्र पर होता है। वहीं ईसाई धर्म में पुत्री को अपने माता पिता की संपदा में से अपने अन्य भाइयों की तरह समान अंश या समान भाग, बराबर का हिस्सा, शेयर मिलने की बात है, होती है।
1: अच्छा, तो ये तो हो गया कि मुस्लिम और ईसाई के बारे में भी आप बता दिए। अब है कि पैतृक संपत्ति में हिंदू महिलाओं के अधिकार का कानूनी पक्ष क्या है, वो हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए पहली बार 1874 ईस्वी में एक कानून बना था, विवाहित महिलाओं की संपत्ति का अधिनियम 1874। उसके बाद फिर उसमें कुछ संशोधन होकर एक दूसरा कानून बना, महिला संरक्षण अधिकार अधिनियम 1937 ईस्वी में। उसके आगे फिर 1956 में एक नया कानून जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, और 2005 ईस्वी में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक संशोधन हुआ जिसे कहा गया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, जिसके तहत इस अधिनियम में 39वां संशोधन हुआ उक्त अधिनियम की धारा 6 में। 1956 में जो कानून था उसको सितंबर 2005 में संशोधित किया गया। यह विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। इसके द्वारा धारा 6 में निहित जो भेदभाव था उसे दूर किया गया, पुत्र और पुत्री को समान बनाया गया। यह कानून सिर्फ हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन पर लागू है, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी इत्यादि धर्मावलंबियों पर यह कानून लागू नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो था या जो है अभी, वह मिताक्षरा धारा के तहत संहिताबद्ध है। मिताक्षरा धारा के अनुसार संपत्ति का अर्थात पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी सिर्फ पुरुष ही हुआ करते थे, परंतु 2005 में इस कानून में संशोधन हुआ और पैतृक संपत्ति में विभाजन के मामले में महिलाओं को सहदायक, कोपरसेनर के रूप में मान्यता दी गई। अर्थात कोपरसेनर का मतलब जन्म के साथ ही जो अधिकार प्राप्त हो जाए
1: जी,
0: वह अर्थात बराबर का हिस्सेदार अपने पुत्र अर्थात या तो उसका भाई है महिला का या उसके पिता का पुत्र है, तो उसके बराबर समान अधिकार की बात की गई। जिस प्रकार पुत्र को जन्म से ही ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं, वैसे ही पुत्री को भी यह अधिकार, संपत्ति का अधिकार, पैतृक संपत्ति में जो अधिकार है वह प्रदान किया गया। पुत्री को भी समान अधिकार दिया गया, लेकिन उसके साथ एक और चीज जोड़ दिया गया, वह है देनदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पुत्र के समान ही पुत्री को भी निभानी पड़ेगी। यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार के नियम को लागू करता है। यहाँ उत्तराधिकार को कानून के अनुसार लागू किया जाता है, न कि विल अर्थात इच्छा पत्र, जिसे वसीयत भी कहते हैं, के माध्यम से। 2005 के उक्त संशोधन से पूर्व संविधान में मौजूद जो समानता का मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 14 से 18 तक, उसका हनन हो रहा था, और इसी को मद्देनजर रखते हुए 2005 में संशोधन किया गया इस कानून में। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं को समान अधिकार दिया गया। फिर भी कई मामलों में यह प्रश्न उठा कि क्या कानून भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात पहले से ही लागू हो जाएगा। जब कानून बनता है तो लागू उसके बाद होता है, लेकिन उसको उसके पहले से लागू नहीं किया जाता है। लेकिन यह प्रश्न इस कानून में उठा था। और दूसरा कि महिलाओं को यह जो अधिकार है पैतृक संपत्ति में, क्या पिता के जीवित स्थिति पर निर्भर करता है? अगर पिता जीवित नहीं है तो क्या उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं प्राप्त होगा? इन सब को लेकर ही इस कानून में संशोधन किया गया था।
1: जी, ये तो आप बहुत अच्छे ढंग से हमारे श्रोताओं को बताइए। तो अब आप ये बताइए कि इन सब स्थितियों से निबटने के लिए माननीय न्यायालय न्यायपालिका की क्या अवधारणा रही है, यानी क्या निर्णय है?
0: देखिए, सबसे पहले तो इन स्थितियों से निबटने के लिए इसी वर्ष 11 अगस्त 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की पुनर्व्याख्या की, जिसके तहत हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सहदायक अर्थात संयुक्त उत्तराधिकार का जो अधिकार था उसका विस्तार किया गया है। इसमें कहा गया है कि हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है, वह पिता के जीवित होने पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, इस निर्णय में बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिया गया तथा हिंदू उत्तराधिकार जिसके माध्यम से उन्हें विरासत मिलेगी, इसमें जो संशोधन 2005 में हुआ था, 39वां संशोधन हुआ था, उसको यह विस्तारित किया। इसके पूर्व भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इस जजमेंट के आने के पूर्व भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में प्रकाश के केस में और दन्नम्मा के केस में, 2018 में दन्नम्मा का केस, 2018 का केस, इन दोनों मुकदमा में इस मुद्दे पर विचार रखा था, परंतु वे परस्पर विरोधी विचार थे। इसलिए 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इसकी पुनर्व्याख्या की और इस व्याख्या के तहत इन सब समस्याओं को दूर किया गया। सामान्यतः या सारांश रूप में इससे जो लाभ प्राप्त होंगे वे लाभ है, जिन महिलाओं के पास संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है और अगर उन्हें मालिकाना अधिकार मिल गया तो उन्हें जो घरेलू हिंसा जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई रहती है, घरेलू हिंसा का खतरा कम हो जाता है। मालिकाना हक से स्त्री का सशक्तिकरण होता है, जो भारत सरकार और राज्य सरकार की भी योजना है। वैसे एक बात और बता दूं, भारत में सबसे पहले बिहार सरकार के द्वारा 1970 के दशक में गया में 2 भूमिहीन महिलाओं को उनके अपने नाम पर पहली बार सरकार से जमीन मिली थी। यह एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय था बिहार सरकार का और उन्हें भूमि उपलब्ध कराया गया बिहार सरकार के द्वारा। तो उन्होंने उस समय कहा था कि हमारे पास जीभ थी पर हम बोल नहीं सकते थे, हमारे पास पैर थे पर हम चल नहीं सकते थे, अब जब हमारे पास जमीन है तो हमारे पास बोलने और चलने की शक्ति आ गई है। इस प्रकार से यह कानून जो है स्त्री सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और पहले भी करता आया है। इस तरह से पैतृक संपत्ति में जो महिलाओं का अधिकार है वह जन्मजात अधिकार हो गया। इससे उन्हें अगर महरूम किया जाता है, इससे उन्हें अगर हटाया जाता है तो वे कानून का सहारा ले सकती हैं, इसके लिए माननीय न्यायालय जा सकती हैं, जहां वे अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकती हैं और उन्हें वह अधिकार न्यायालय द्वारा दिलाया जाता है।
1: मनोज जी, आपसे हम अंत में एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अगर महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार सहजता से प्राप्त नहीं हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, कानून किस प्रकार उस मदद करेंगी?
0: देखिए, अगर सामान्य तौर पर उनके अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है, जो अधिकार देने वाले हैं पैतृक संपत्ति में, उनके पिता या भाई या दादा या जो भी संबंधी हो, अगर उन्हें वह अधिकार से वंचित कर रहे हैं तो उन्हें न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। उसमें सबसे पहले किसी अधिवक्ता के पास जाएं और अधिवक्ता से एक नोटिस निर्गत करवाएं, उनको कानूनी नोटिस जिसे कहा जाता है, कानूनी नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से भेजें संबंधित व्यक्तियों को, संबंधित संबंधियों को कि क्यों नहीं आप वे अधिकार मुझे दे रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है। इस संबंध में एक और सुविधा है सरकार के द्वारा, अगर कोई गरीब महिला है तो वे आवेदन दे सकती हैं, वहां पर एक लीगल एड कमिटी बनी रहती है
1: जी।
0: सरकार की एक विशेष सुविधा है ये, आप अगर गरीब हैं, वकील का फीस बहन करने में असमर्थ हैं, तो आप चले जाएं न्यायालय में, न्यायालय में वहां सुविधा है उस तरह की, आप आवेदन दें और आवेदन के द्वारा आपको वकील उपलब्ध कराया जाएगा जो उन्हें कानूनी नोटिस भेजेगा। कानूनी नोटिस से अगर यह मामला सहज हो जाए तो वहीं समाप्त हो जाता है मामला, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर आपको पार्टीशन सूट करना पड़ेगा जो माननीय न्यायालय में होता है। ये दूसरे स्तर की बात हुई जहां पर कोर्ट में आपको मुकदमा दायर करना होगा, लेकिन सबसे पहले मुकदमा दायर करने के पहले नोटिस देना बेहतर होता है। अगर मामला वहीं से सुलझ गया तो फिर केस मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है
1: और उन्हें अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है।
0: पैतृक संपत्ति में अधिकार न्यायालय द्वारा प्राप्त कराया जाता है।
1: तो मनोज जी, आप अपना कीमती समय देकर महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार के बारे में बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: ये था कार्यक्रम कानूनी सलाह और आज आप सुन रहे थे पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार विषय पर ये पुनः प्रसारण था इस बातचीत का। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बजे हैं। अगला प्रोग्राम है आपकी चाहत।

चांदनी फिल्म का ये गाना था आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। सरोजक से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, शालिया, सोएब खान और इनके ढेर सारे साथी। और ये अगला खत है सरगुजा मैनपाट से, सोनिया, सोनम, रेशमा, आदिवा, बिहारी कॉलोनी से परवीन, सरफुद्दीन और इनके साथी, जेल रोड मथुरा से वसीम, आसमा, अकरम उल्ला, आसमा और इनके ढेर सारे साथी। और अब सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में सिलसिला फिल्म से ये गाना आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। दतरंगी से आप हैं भागवत वर्मा, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, और चेपाकला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मिणी, प्रियंका और दीपिका।

और दोस्तों, अब कार्यक्रम आपकी चाहत में ये अगला गाना आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। दिल्ली शहर मोरी गेट से आप है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और बग बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। उदित नारायण की आवाज़ में सुनवा रहे हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर अनारी फिल्म से ये गाना।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्में, गीतों का प्रोग्राम आपकी चाहत, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। दोस्तों, अब सुनवा रहे हैं आपको मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में राजा साहब फिल्म का ये गाना। सुनना चाहा है आप सभी ने ओल्ड लिसनर ग्रुप मगनपुर से, आप हैं अमजद अली अब्बास आलम और सचिदानंद दुबे, मोहन पाठक, कुमार दिवाकर, निखिल, बिपिन, अर्जुन आनंद, समीर, रामदेव, कुतुबद्दीन रागिब, इफ़ज़ाल ताज, नूरजहाँ, नूर हसन, नूरुल्ला, आप सभी हैं रेडियो दोस्त रांची झारखंड से।

यह कार्यक्रम का अगला गाना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें हैं, चल मेरे भाई, फिल्म का नाम है। सुनना चाहे आप सभी ने बरका काना से भानु पासवान, अशोक पासवान, सुधा, मंजू, सुनीता, दीपा, अनवी, सुजल, पंचमंदिर रोड से नीलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू, और मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया, गोलू, भोला, इनके मम्मी पापा और ढेर सारे साथी।

और दोस्तों इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम आपकी चाहत यहीं समाप्त होता है। दीजिए अपनी दोस्त अनामिका को अनुमति। नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:45 थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज एट 9 हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए, 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत में ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक है।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

0: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
1: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

0: बैठे।
1: आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्हें कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के 2 सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही 2 सूट बोटाई के साथ एकदम सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काम छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथे बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए, और उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।
1: कर चले हम फिदा जान तन

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर।

मोहम्मद रफी की आवाज में आबरू फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा में ये अगला गाना। किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम अभिमान।

कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अगला प्रोग्राम बस थोड़ी देर में।

शीर्षक कार्यक्रम एक फिल्म से। आज की फिल्म साल 1966 में आई फिल्म सास और आवाज़।

सुबोध मुखर्जी द्वारा निर्देशित ये फिल्म आई थी साल 1966 में और मुख्य भूमिकाएं निभाई थी जॉय मुखर्जी और सायरा बानो ने। सुनिए अगला गाना।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज थी इस गीत में। और अब सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाजों में सुनिए अगला गाना।

और रफी की आवाजों को आप सुन रहे हैं इस गीत में। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम एक फिल्म से यही समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे सांस और आवाज फिल्म के गीतों को।

0: कार्यक्रम एक फिल्म से हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 11 बजे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ETMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
4: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
3: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 km between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. The Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA between India and the United Kingdom became operational today. Simultaneously, the agreement on social security referred to as the Double Contribution Convention also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero duty access to 99% of Indian exports in the UK market, including those in textiles, leather, engineering, food processing, pharmaceuticals and MSME. On the first day of CETA, Indian goods worth $140 million were exported to the United Kingdom. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. The minister made this statement to the press after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels. He said that India and the EU have a natural affinity. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU FTA as fair, equitable and balanced, which is a win-win agreement for every sector in both the nations. Highlighting the discussions during the meeting, he said that they shared a vision for an innovation-driven, trusted and future-ready growth partnership. The Election Commission today extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, that is BLOs, which were scheduled till the 29th of July, will now continue till the 8th of August. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till the